मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:57 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। इस कोबजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य प्रदेश मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

समूह स्वर में अभी आपने महाकवि निराला की ये देशभक्ति रचना सुनी। वंदना में आइए, अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद का गाया ये भक्ति गीत।

वाणी जयराम और साथियों से अभी आपने तुलसीदास कृत ये राम स्तुति सुनी। अगला भक्ति गीत सतीश सिंह सिकरवार के स्वर में।

0: चिंतामणि और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। श्रोताओ, आज है चंद्रशेखर आजाद की जयंती। आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं श्याम सरीन से चिंतन।
1: चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अत्यंत गरीब परिवार और पिछड़े हुए इलाके में जन्म लेकर भारत माता की आजादी का सबसे अधिक चमकदार अध्याय लिखा, वो चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपनी जिंदगी की हर सांस अपने देशवासियों को समर्पित की, वो चंद्रशेखर आजाद जिनके हृदय की हर धड़कन से देशभक्ति का संगीत निनादित हुआ, वो चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपने गर्म लाल लहू से अप्रतिम वीरता का अमिट आलेख लिखकर भावी पीढ़ियों को अनुप्राणित किया। वाराणसी के संस्कृत विद्यापीठ के 14 वर्ष के चंद्रशेखर ने बापू के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, पकड़े गए और मैजिस्ट्रेट खरे घाट के सामने पेश किए गए। तुम्हारा नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन, रहते कहां हो? जेल खाना। चंद्रशेखर के ऐसे उत्तरों से मैजिस्ट्रेट खरे घाट का चिढ़ जाना स्वाभाविक था। पूछा कि आज पहली बार तो जेल में आए हो, फिर जेल खाना तुम्हारा घर कैसे हो गया? पूरे देश को ही अंग्रेजों ने जेल खाना बना रखा है, फिर मेरा घर भी तो जेल खाना ही हुआ। खरे घाट ने अल्पायु के कारण चंद्रशेखर को 15 बैतों की सजा सुनाई। चंद्रशेखर ने कहा, मेरी कम उम्र पर मत जाइए, जो सजा देनी हो देकर अपने अरमान पूरे कर लीजिए, क्योंकि फिर तो मुझे जिंदगी में कभी आपकी जेल में आना नहीं है। पानी में भीगा हुआ बैत उनकी नंगी पीठ पर बरसाया गया, हर बार मांस उधड़ा चला आता था। चंद्रशेखर हर बैत पढ़ने पर भारत माता की जय, गांधी जी की जय बोलते चले जाते थे। 15 बैतों की सजा भुगत लेने पर जेलर गंडा सिंह ने 3 आने उनकी हथेली पर रखे। चंद्रशेखर ने वो 3 आने उनके मुंह पर दे मारे और अपनी कमीज को कंधे पर डाला और बनारस केंद्रीय जेल के द्वार से बाहर आए। यहाँ भीड़ पहले से तैयार थी, जो उन्हें कंधों पर उठाकर जुलूस की शक्ल में ज्ञानवापी के निकट ले गई। वीर किशोर चंद्रशेखर आजाद का अत्यधिक उत्साह के साथ अभिनंदन वंदन किया गया। सभा को उन्होंने आश्वस्त किया कि वे यथाशक्ति देश की सेवा करेंगे। चंद्रशेखर ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के दल के सदस्य के रूप में काकोरी की डकैती में भाग लिया और अपने आजाद नाम को सार्थक किया। वे जब तक जिए कभी पकड़े नहीं जा सके। फिर भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ बनाया। इसकी सैन्य गतिविधियों के वे कमांडर इन चीफ बनाए गए। उनके निर्देशन में 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स का वध किया गया। इस तरह लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिए जाने से पूरे देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। आज के दौर में जबकि नैतिकता पर संकट है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में संपन्न हुई उस डकैती की याद आती है जो उन्होंने दिल्ली के कूचा नटवा स्थित गाडोदिया स्टोर में 1930 के जून के प्रथम सप्ताह में डाली थी। मुनीम ने डरते डरते

0: सारा कैश उन्हें सौंप दिया। तिजोरी में जो स्वर्ण और रजत के आभूषण थे उनकी पोटली भी मुनीम ने चंद्रशेखर की ओर सरका दी। तब चंद्रशेखर ने उसे डांटते हुए कहा, हम पेशेवर डकैत नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं, माँ बहनों के इन गहनों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। दूसरे दिन जब स्टोर के मालिक लक्ष्मी नारायण को ये बात मुनीम ने बताई तो वे क्रांतिकारियों की इस नैतिकता से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने तफ्तीश के लिए आई पुलिस को ये कहकर लौटा दिया कि हमारे यहाँ कोई डकैती नहीं पड़ी। इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ 14,000 से अधिक रुपए लगे थे। रेजगारी तो उन्होंने यमुना मैया को भेंट कर दी और इतनी धनराशि से दल के अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए। इलाहाबाद से दिल्ली भेजने के लिए जब आज़ाद सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी को विदा करने लगे तो दोनों फूट फूट कर रोईं। ऐसा लगा जैसे आज़ाद भैया से अंतिम बार मिल रही हैं, क्योंकि दल के कानपुर के प्रभारी वीरभद्र तिवारी, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हो चली थीं, उन्हें डर था कि वह आज़ाद भैया के लिए मौत का जाल बिछा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद संभलते, उस देशद्रोही को दंडित करते। इसके पहले वह उन्हें एल्फ्रेड पार्क में पुलिस दल से घिरवा कर विश्वासघात कर बैठा, अपनी मातृभूमि से, अपने दल से। चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति हम समझते हैं हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम नैतिकता और देशभक्ति का दामन न छोड़ें, राष्ट्र को सर्वोपरि माने, इसके लिए जिए और इसके लिए मरें।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप चंद्रशेखर आज़ाद जयंती पर श्याम सरीन के विचार सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ, अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की जानकारी का विषय है जल संरक्षण जरूरी क्यों। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देव नारायण।
1: किसान भाइयों, सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सभी प्राणियों, जीव जंतुओं व पेड़ पौधों का मुख्य अंश जल ही होता है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 90% भाग जल का ही है। हमारे खाने पीने की सभी चीजों में जल का अंश होता है। पीने के लिए तो हमें जल चाहिए ही। हमारे जीवन के सारे क्रियाकलापों में जल की मुख्य भूमिका होती है। खाने के लिए जो खाद्यान्न हमें चाहिए, उसको उगाने के लिए भी जल चाहिए। जिन पशुओं से हमें दूध, मांस आदि मिलता है, उनके पालने के लिए भी हमें जल चाहिए। इसलिए कहा गया है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, अतः जल का संरक्षण अति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है और 1/4 भाग थल है, परंतु इतनी अधिक मात्रा में जल होने के बावजूद केवल इसका 1% ही उपयोग के लिए उपयुक्त है। जो जल समुद्र में है वह खारा है तथा उपयोग के लायक नहीं है। वर्षा का जल जो नदियों, तालाबों, कुओं, बावड़ी एवं भूमि के अंदर है, वही उपयोग के लायक है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती के लिए पूरे वर्ष भूमिगत जल का दोहन होता रहता है, जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। परंतु इस गति से भूमिगत जल का जो संवर्धन है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अगर वहीं अगर बात करें तो वर्षा के मौसम में लाखों गैलन जल व्यर्थ बह के चला जाता है। पहले जब भूजल स्तर ऊपर था तब चरसों, बारहट आदि से सिंचाई होती थी। इसके बाद भूजल स्तर गिरने पर पंप सेट से सिंचाई की जाने लगी और अब अधिक जल स्तर गिरने पर पंपों से भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है, जिसके कारण लगातार भूजल स्तर गिरता चला जा रहा है। अगर हम लोग कुछ बातों को ध्यान में रखें इस संबंध में, तो हम लोग जल को संरक्षित कर सकते हैं। इसमें पहली बात है कि हमें ये महसूस करना चाहिए, मानना चाहिए कि जल के भंडार सीमित हैं और जल का हमें हर स्तर पर अपव्यय रोकना होगा और वर्षा जल के संरक्षण पर ध्यान देना होगा। और दूसरी है कि उपलब्ध जल का प्रयोग बहुत समझदारी से करना होगा, जिससे जल की उपयोग क्षमता को बढ़ा सकें। और इस संबंध में अगर हम बात करें तो जो कुछ बातें हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे हमारे घरों की टंकियाँ हैं, उनकी टोटियाँ हैं, वो अगर उनमें नहीं है तो बहुत सा जल बह के चला जाता है, अतः हमें नलों की टोटियाँ ठीक करवानी होंगी। इसके बाद है कि घर के उपयोग के बाद जल को एक गड्ढे में इकट्ठा करें और उससे गृह वाटिका में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है कि घर के उपयोग के बाद अगर कुछ जल बाहर बह के जाता है तो उसे सूखते गड्ढे के निर्माण के बाद उसको संरक्षित कर सकते हैं। पौधों के थाले हैं, उनमें पलवार के रूप में हमें सूखी घास या पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग करें। इससे है कि भूमि सतह से जो बाष्पीकरण द्वारा जल की हानि होती है उसको रोक सकते हैं। इसी प्रकार है कि जब आजकल

0: खेतों में गर्मी की फसलें जैसे मूंग है, सब्जियां हमारी भिंडी उंडी, तो है कि इन फसलों की गुड़ाई करने के बाद जो खरपतवार हैं उनको फसलों की पंक्तियों के बीच में भूमि सतह पर पलवार के रूप में फैला दें। इससे भूमि में नमी अधिक समय तक बनी रहेगी और सिंचाई की कम आवश्यकता होगी। इसके अलावा सिंचाई के जल की बर्बादी रोकने के लिए खुली नालियों के स्थान पर HDPE पाइप, जो प्लास्टिक के पाइप हैं काले वाले, उन पाइप का इस्तेमाल करें। इससे है कि बहुत पानी की बचत होगी। इसके अलावा कम पानी में अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जो पद्धति है उसका प्रयोग करें। तो इसमें कम पानी से हम लोग अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकते हैं और हल्की सिंचाई कर सकते हैं। कृषि में जल संरक्षण की वैज्ञानिक विधियां अपनाकर इसकी दक्षता को बढ़ाएं और इसे हम लोगों को संरक्षित करना चाहिए। जैसे हम लोगों के फलदार पौधे लगे हुए हैं तो उसमें है कि ड्रिप सिस्टम लगा देंगे, तो उसमें है कि जहां आपके पौधा लगा हुआ है उसके थाले में पानी बूंद बूंद करके जो है आपका थाले में जाएगा और भूमि में जो है वो अवशोषित होगा। तो इसमें है कि कम पानी से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई कर सकते हैं। इसी प्रकार है कि स्प्रिंकलर है, अगर स्प्रिंकलर का हम लोग सिंचाई में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें है कि पानी के करीब 50% की बचत होती है।
1: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी डॉक्टर देवनारायण जानकारी दे रहे थे जल संरक्षण जरूरी क्यों इस विषय पर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
2: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
3: याद रखो हमारी बात,
4: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
3: जंगल है धरती का गहना,
4: सदा इसकी रक्षा करना,
3: होगी जो धरती पर हरियाली,
4: चहू और फैलेगी खुशहाली।
1: दर्पण कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। संस्कृत में समाचार अब
5: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान यत् विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं जनान्दोलनस्य रूपं धारयेत्। राष्ट्रस्य युवजनाश्च अस्य संकल्पस्य आधारशिलाः भवेयुः। सर्वेषां परिष्काराणां केन्द्रे नागरिकाणां कल्याणमेव भवितव्यमिति तेनोक्तम्। प्रधानमंत्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत लक्ष्याणां सिद्ध्यै ग्रामविकासस्य, कृषेः, समाजकल्याणस्य तथा सम्बद्धक्षेत्राणां प्रगति समीक्षार्थम् आयोजितस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अस्मिन् उपवेशने मन्त्रिमण्डलसचिवः, प्रमुखमन्त्रालयानां सचिवाः

0: तथा प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। प्रशासनेन संसदि नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे सार्थक चर्चायै स्वसज्जता पुनरुक्ता। लोकसभायां संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय संसदीय नियमानुसारं सर्वेषां पक्षाणां सहभागेन अस्मिन् विषये सार्थक चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः तृतीयदिनमपि संसदि विपक्षेण नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि चोद्धृत्य पुनः पुनः व्यवधानं कृतम्। अनन्तरं लोकसभा राज्यसभा च आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय मंत्री च जेपी नड्डा अवदत् यत् छात्रैः उत्थापितं नीट प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं राजनीति विषयः न कर्तव्यः। अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः अपि न समीचीनः। असौ ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवदत् यत् एतत् अन्वेषणस्य विषयः अस्ति अथ अस्मिन् विषये गम्भीरविमर्शस्य च आवश्यकता वर्तते। असौ एतदपि अवदत् यत् एषा गम्भीरा समस्या अस्ति यस्याः विषये सम्यक् निष्कपटश्च विमर्शः अपेक्षितः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे आयोजितस्य क्वाड देशानां विदेश मंत्रणां उपवेशनस्य अंतराले कनाडा देशस्य विदेश मंत्रणा अनीता आनंद इत्यनया सह मेलनम् अकरोत्। असौ सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे अवदत् यत् भारत कनाडा देशयोः मध्ये सहकार्यं निरन्तरं सुदृढं भवति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् उभय देशयोः प्रधानमन्त्रिभ्यां निर्धारित लक्ष्याणां सिद्धि विषये वार्ता जाता। उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपति पदासीना गोर्दाना सल्जानोस्का दावकोवा इत्येषा अवदत् यत् विश्वस्य बृहत्तम लोकतन्त्रस्य भारतस्य राष्ट्रपतिः एका महिला अस्ति इति गौरवस्य विषयः अस्ति। सा एतदपि अवदत् यत् राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह मेलनानन्तरं सा अतिप्रभाविता जाता तथा महिलाः विश्वे परिवर्तनम् आनेतुं समर्थाः सन्ति इति तया एतदपि अनुभूतम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसः आचर्यते। अस्मिन्नेव दिवसे 27-1900 वर्षे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य संस्थानस्य अंतर्गते बॉम्बे केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं जातम्। 37-1900 वर्षे जून मासस्य अष्टमे दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्त्य ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्। अयं दिवसः भारतस्य विकासे शिक्षा प्रसारे तथा सांस्कृतिक रिक्थस्य संरक्षणे प्रसारणस्य महत्वपूर्णां भूमिकां प्रकाशयति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
2: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दोना सिल्जानोवस्का दाफोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दाफोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। अमेरिका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमरीका होर्मुज जलडब्रू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के एक ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 7:20 पर राकेश अचल से उनका काव्य पाठ सुना जा सकता है।

संगीत 7:30 बजे होगा। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग 8:30 बजे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा और 9 बजे से आप सुनेंगे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे आप सुनेंगे यखलेश बघेल का ध्रुपद धमार गायन। जिले की चिट्ठी 10 बजे भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे और 10:05 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ग्यारह बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

आज गुरुवार है। आज आप सुनते हैं विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसे शाम 4 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाता है। 5 बजे से कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से जारी रहेगा, जिसमें सभा की शुरुआत में ही 5 बजे युवाणी कार्यक्रम सुना जा सकता है, जो जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग, जो NCERT द्वारा प्रायोजित है, इसे 6 बजे सुना जा सकता है। हमारे केंद्र से चौपाल कार्यक्रम शाम 7:20 पर सुनेंगे आप, जिसमें आज चर्चा होगी भारतीय लोक सेवा प्रसारण दिवस पर। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर भी चर्चा होगी और डॉक्टर दीपाली रघुवंशी से सोहन सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी, जिसका विषय होगा फसल चक्र क्यों है ज़रूरी। रात 8 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानी

0: कन्या यात्रा पर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में होंगे शामिल और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री एली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि छात्रों द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये जांच का विषय है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर गहन और गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
1: लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी।
0: प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल समय से दो दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में कुल तीन दिनों में 23 घंटे सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान पूरक बजट पेश किए जाने के साथ ही 15 विधेयक पारित किए गए। इनमें समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक 1 में स्कूली बच्चों से संवाद किया। मुख्यमंत्री से विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देखने आए आगरमालवा जिले के विभिन्न अंचलों के 50 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के साथ साथ जबलपुर के 40 विद्यार्थियों ने भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विद्यार्थी देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को समझना, उसके मूल्यों को आत्मसात करना और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना ही जागरूक नागरिक की पहचान है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व के रूप में 29 जुलाई को पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाई जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में गुरुजनों का स्वागत सम्मान, व्याख्यान, उद्बोधन और छात्र शिक्षक संवाद जैसे साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल मुख्यमंत्री निवास स्थित संवाद भवन में आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि राज्य में खेलो बढ़ो अभियान के अंतर्गत सांसद कप और विधायक कप के माध्यम से प्रदेश के हर विधानसभा और तहसील स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान के ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर छतरपुर की क्रांति गोड को सम्मान स्वरूप 5,00,000 रुपए देने की भी घोषणा की। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती के अवसर पर आज अलीराजपुर जिले में चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित कृषि उपज मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इस मौके पर डॉक्टर यादव विभिन्न विभागों के लगभग 287 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन करेंगे। साथ ही वे लगभग 53 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए

विभिन्न निर्माण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे अपने पूर्ववर्ती अधिकारी की तरह ही उन्हीं शर्तों और नियमों के साथ ये पद संभालेंगे। वहीं मध्यप्रदेश शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 11 और जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीते हैं। और बात मौसम की करते हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में बारिश दर्ज की गई। कल सबसे ज्यादा बारिश नर्मदापुरम जिले में हुई। मौसम विभाग ने आज खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और धार जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, विदिशा और रायसेन सहित 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। शेष अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में भारत सहित 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। झाबुआ में बाल विवाह की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। खंडवा में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाने का भी आह्वान किया। मंदसौर में ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कलेक्टर अदिति गर्ग ने सीतामऊ और सुवासरा में बैठक लेकर सभी घरों तक डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कल आगरमालवा जिले के पर्यटन ग्राम भानपुरा पहुंचकर होम स्टे की साफ सफाई, सुरक्षा, स्थानीय संस्कृति के अनुरूप साज सज्जा और पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। इंदौर जिले की खुड़ैल तहसील अंतर्गत ग्राम असरावद बुजुर्ग में राजस्व शिविर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सिंगरौली में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बरगवा और कन्या शिक्षा परिसर बरगवा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित समिति कक्ष में कर्तव्य फाउंडेशन रतलाम द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10। अभी आगे दीजिए। नमस्कार।

0: Yiyagaş.
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं राकेश अचल से उनका काव्य पाठ।
2: साथियों, मैं आज के अपने कविता पाठ में सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूँ एक गीत। आज तोड़ने सन्नाटा निकला हूँ, तुम चाहो तो हाथ बटा सकते हो, तुम चाहो तो हाथ बटा सकते हो। गर्त जम चुकी है रिश्तों के ऊपर, इसकी झाड़ पोंच करना ही होगी। गगरी रीत चुकी है अपने मन की, इसे दोबारा से भरना ही होगी। फिर झिझोड़ने सन्नाटा निकला हूँ, तुम चाहो तो हाथ

हाथ बटा सकते हो। आज तोड़ने सन्नाटा निकला हूँ, तुम चाहो तो हाथ बटा सकते हो। इसका अगला छंद है कि आवाजाही बंद हो गई सारी, आडंबर है आडंबर पर भारी।

निकला हूँ, तुम चाहो तो हाथ बटा सकते हो। इस गीत के बाद कुछ गज़लें हैं जो बिल्कुल आम अनुभूतियों की गज़लें हैं। पहली गज़ल है कि मैंने भी मेरी जान समझने की भूल की, पिंजरे को आसमान समझने की भूल की। मैंने भी मेरी जान समझने की भूल की, पिंजरे को आसमान समझने की भूल की। जिस चार दीवारी में मेरा कोई नहीं था, जिस चार दीवारी में मेरा कोई नहीं था, उसको ही एक मकान समझने की भूल की। पिंजरे को आसमान समझने की भूल की। वो जबकि इशारों से बोलता था बहुत कुछ, वो जबकि इशारों से बोलता था बहुत कुछ, उसको ही बेजुबान समझने की भूल की। पिंजरे को आसमान समझने की भूल की। अगला शेर है कि हर इंतखाब में वही चेहरा बदल गया, हर इंतखाब में वही चेहरा बदल गया, हमने जिसे महान समझने की भूल की। और आखिरी शेर कि तुम बच सको तो बच के निकल जाओ वक्त है, तुम बच सको तो बच के निकल जाओ वक्त है, हमने तो ख़ानदान समझने की भूल की, पिंजरे को आसमान समझने की भूल की। और इसी क्रम में एक गज़ल और कि दिल को दरिया बनाए बैठे हैं, दिल को दरिया बनाए बैठे हैं, कोई मिलने तो आए बैठे हैं, इम्तहानों से हम नहीं डरते, इम्तहानों से हम नहीं डरते, कोई लेने तो आए बैठे हैं, दिल को दरिया बनाए बैठे हैं, कोई मिलने तो आए बैठे हैं। शेर है कि इन गरीबों के दिल में मत झांको, इन गरीबों के दिल में मत झांको, जाने क्या क्या छिपाए बैठे हैं, दिल को दरिया बनाए बैठे हैं, हम समझते थे और कुछ इनको, हम समझते थे और कुछ इनको, ये तो मजमा लगाए बैठे हैं, दिल को दरिया बनाए बैठे हैं। और एक बहुत ही आम मुहावरे का शेर है कि दाल गलने न पाएगी बुद्धू, आग सारी बुझाए बैठे हैं, दाल गलने न पाएगी बुद्धू, आग सारी बुझाए बैठे हैं, और एक तुम हो खुशी से मिलते हो, एक वो कि बौखलाए बैठे हैं, दिल को दरिया बनाए बैठे हैं, कोई मिलने तो आए बैठे हैं। गज़लों का ये सिलसिला एक और नई गज़ल के साथ। वो पहेली की तरह फेंकेगा पांसे कितने, जाने होना है अभी और खुलासे कितने, वो पहेली की तरह फेंकेगा पांसे कितने, जाने होना है अभी और खुलासे कितने, एक बारूद है जो रोज़ ही फट जाती है, एक बारूद है जो रोज़ ही फट जाती है, एक वो रोज़ ही देते हैं दिलासे कितने, वो पहेली की तरह फेंकेगा पांसे कितने। शेर के कौम के नाम पर हर बार पसीजा है दिल, कौम के नाम पर हर बार पसीजा है दिल, कौम के नाम पे होते हैं खुलासे कितने, वो पहेली की तरह फेंकेगा पांसे कितने। और भूख गुर्बत की अमर बेल तो तोहमत है साहेब, भूख गुर्बत की अमर बेल तो तोहमत है साहेब, आपके इल्म ने बीमार तलाशे कितने। और आखिरी शेर के देख के बाढ़ की तस्वीरें दहल जाता हूँ, लोग पानी के भंवर में हैं प्यासे कितने, देख के बाढ़ की तस्वीरें दहल जाता हूँ, लोग पानी के भंवर में हैं प्यासे कितने, एक वो पहेली की तरह फेंकेगा पांसे कितने, जाने होना है अभी और खुलासे कितने। और अंत में मैं आपको कुछ कुंडलियाँ जो बहुत कम आजकल लिखी जाती हैं, दो कुंडलियाँ सुनाना चाहता हूँ कि उसकी लाठी मानती दुनिया बे आवाज़, जिसका है ब्रह्मांड पर आदिकाल से राज, उसकी लाठी मानती दुनिया बे आवाज़, जिसका है ब्रह्मांड पर आदिकाल से राज, आदिकाल से राज जगत का वही नियंता, करता नव निर्माण बड़ा सबसे अभियंता, आदिकाल से राज जगत का वही नियंता, करता नव निर्माण बड़ा सबसे अभियंता, कहें अचल कविराय रमा है वो कणकण में, है वो सबके साथ जिंदगी के हर रण में, है वो सबके साथ जिंदगी के हर रण में। ये गीत आजकल की जो शहरों से गाँव से शहरों की ओर पलायन है उसके ऊपर केंद्रित है कि तुलसी तो अब भी है घर में आंगन नहीं रहा, पता नहीं क्यों आज सांवरे वो मन नहीं रहा, तुलसी तो अब भी है घर में आंगन नहीं रहा, पता नहीं क्यों आज सांवरे वो मन नहीं रहा, घर आंगन की जगह छीन कर संकुल थमा दिए, रिश्ते नाते सभी बर्फ में किसने जमा दिए,
घर आंगन की जगह छीनकर संकुल थमा

0: जमा दिए, रिश्ते नाते सभी बर्फ में किसने जमा दिए, उत्सवहीन हो गया जीवन, ईंधन नहीं रहा, तुलसी तो अब भी है घर में आंगन नहीं रहा। और छंद देखिए कि अब खुद से ही बैठे बैठे बातें करते हैं, दस्तक सुनकर दरवाजे पर हम सब डरते हैं। अब खुद से ही बैठे बैठे बातें करते हैं, दस्तक सुनकर दरवाजे पर हम सब डरते हैं, नीरसता पर सर्द देह में नर्तन नहीं रहा, तुलसी तो अब भी है घर में आंगन नहीं रहा। और क्षण देखिए कि अब चौराहे दहरी द्वारे छिपे किताबों में आते रहते हैं जब तब सब मेरे ख्वाबों में, झूले पड़ते नहीं आम पर सावन नहीं रहा, तुलसी तो अब भी है घर में आंगन नहीं रहा। और अंतिम है कि चलते लौट लौट कर उजड़े अपने गांव बुलाते हैं, चलो लौट कर अपने उजड़े गांव बुलाते हैं, बैठे हुए नीम के नीचे आल्हा गाते हैं, चलो लौट कर उजड़े अपने गांव बुलाते हैं, बैठे हुए नीम के नीचे आल्हा गाते हैं, भीड़ भाड़ में अब कोई ताजापन नहीं रहा, तुलसी तो अब भी है घर में आंगन नहीं रहा, पता नहीं क्यों आज सांवरे वो मन नहीं रहा, पता नहीं क्यों आज सांवरे वो मन नहीं रहा।
1: अभी आप सुन रहे थे राकेश अचल से उनका कविता पाठ, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम, लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका। आरको प्रभु मुखर्जी को सुनते हैं, फिल्म है कपूर एंड सन्स। मनोज मुंतशिर के गीत को संगीतबद्ध किया है आरको प्रभु मुखर्जी ने ही।

कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह के स्वर में फिल्म जैकपॉट से। तुराज के गीत को संगीतबद्ध किया है शारिब तोशी ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें चलो
5: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए
6: आइए अब आपको सुनवाते हैं यासिर देसाई का गाया ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म गोल्ड से गीत और संगीत आरको प्रभु मुखर्जी का

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह का गाया फिल्म तुम बिन का ये गीत। गीतकार मनोज मुंतशिर और संगीतकार अंकित तिवारी।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए अब आपको सुनवाते हैं आतिफ असलम का गाया फिल्म जीनियस का ये गीत। गीतकार मनोज मुंतशिर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

कार्यक्रम का अगला गीत के और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में, गीत और संगीत आरको प्रभु मुखर्जी का, और फिल्म का नाम जिस्म 2।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक को, गीत मनोज मुंतशिर का, संगीत अमाल मलिक का और फिल्म का नाम है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: घर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की दो दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न।
0: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
5: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर

0: कर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
2: पीओजे के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 ACP समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज सिटीजन वेलफेयर मस्ट रिमेन एट हार्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स शुड बी डिजाइंड अराउंड पीपल्स नीड्स। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा सेज गवर्नमेंट रेडी टू डिस्कस नीट पेपर लीक इश्यू इन पार्लियामेंट एंड फॉर्मुलेट इफेक्टिव पॉलिसी टू इंश्योर परमानेंट सोल्यूशन टू द इश्यू। India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Center approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
0: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing

0: However, this year's Commonwealth Games presents a different challenge with fewer medal events and a significantly smaller sporting program. In China Open Badminton, India's PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Shangzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. In another round of 32 match, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And now for a look at today's newspapers. It's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Sarabjit. On the margins of ASEAN engagements, Jaishankar conveys to Lavrov India's concern over safety of Indian seafarers, notes a statesman. The Financial Express informs, cross-holding cap set to ease. Airline doors may open for Adani GMR. 100% tariff on generic drug imports into US from 2028. Trump prescribes new pill. India's side effects unlikely, states the Economic Times. And finally, the Financial Express on its editorial page under the caption, Oil on the Boil Again, writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
3: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है सीतांशु दत्त रॉय। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के 2 भाग्यशाली श्रोता हैं, गुरुग्राम से महेंद्रनाथ महर्षि और दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
4: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
5: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
4: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
5: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
4: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

स्वरों की यात्रा निस्सीम होती है। स्वर न भाषा के दायरों में सिमट पाते हैं और न ही सरहदें उन्हें बांध पाती हैं। लेकिन जब कोई साधक अपने सुरों में मातृभूमि का प्रेम, अपनी संस्कृति की गरिमा और अपनी आत्मा की तपस्या को एक साथ पिरो देता है, तब संगीत मात्र मनोरंजन का साधन नहीं रहता, वो वतन का राग बन जाता है। आज की प्रस्तुति में एक ऐसी विलक्षण स्वर साधिका का स्मरण, जिनकी आवाज में कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय ऊंचाइयां थीं और देशभक्ति की प्रखर चेतना थी, जिन्होंने परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी एक राह बनाई और अपने स्वरों से ये सिद्ध किया कि सच्चा संगीत मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को अपने वतन से जोड़ता है। वतन का राग कार्यक्रम में आज बात कर्नाटक संगीत विभूति पद्म विभूषण डी के पट्टम्माल की।

डी के पट्टम्माल यानी दामल कृष्णस्वामी पट्टम्माल कर्नाटक संगीत की महानतम गायिकाओं में से एक हैं। उन्हें एमएस सुब्बुलक्ष्मी और एमएल वसंत कुमारी के साथ कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति में स्थान प्राप्त है। उनका जीवन संगीत, साहस और परंपरा को एक नई दिशा देने वाली प्रेरक कहानी है। डी के पट्टम्माल का जन्म 19 मार्च सन 1919 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। उनके पिता दामल कृष्णस्वामी दीक्षितार स्वयं संगीत के गहरे जानकार थे। उनकी माताजी का नाम राजम्माल था। उनकी माताजी भी अत्यंत सुरीली गायिका थीं। लेकिन ये वो समय था जहां महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा बहुत गहरी खींची हुई थी। उन्हें घर की चारदीवारी के बाहर, यहां तक कि रिश्तेदारों के सामने भी गुनगुनाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी के भीतर छिपी संगीत प्रतिभा को पहचान लिया था। वो अपने पिता की उंगली थामे संगीत सभाओं में जातीं और वहां जो कुछ भी वो सुनतीं वो उनके बाल मन पर अंकित हो जाता। घर लौटकर वो अपनी तुतली जुबान में उन कठिन बंदिशों को हूबहू गाया करतीं। इस छुप छुप कर चलने वाली स्वर साधना में उनके भाई डी के रंगनाथन, डी के नागराजन और डी के जयरामन उनके सहयात्री बने। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में मद्रास में अपनी पहली मंचीय प्रस्तुति दी। प्रतिष्ठित रसिका रंजनी सभा में उनके स्वर गूंजे तो श्रोता मंत्रमुग्ध थे। लेकिन उस दौर में एक लड़की का सार्वजनिक मंच पर तंबूरा लेकर बैठना एक सामाजिक भूचाल से कम नहीं था। समाज ने उंगलियां उठाई, रूढ़िवादियों ने आंखें तरेरी, लेकिन स्वर की एक मधुर यात्रा आरंभ हो चुकी थी। मद्रास कॉरपोरेशन रेडियो की तरंगों पर भी उनकी आवाज गूंजी और समय ने देखा कि कर्नाटक संगीत का इतिहास बदल रहा है।

कर्नाटक संगीत जगत में डीके पट्टम्माल की आमद से संगीत जगत के बड़े बड़े दिग्गजों को ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक संगीत का इतिहास अब दो भागों में बंट चुका है, डीके पट्टम्माल के आने से पहले का इतिहास और उनके आने के बाद का इतिहास। इसी स्वर्णकाल में उनका परिचय महान संगीतकार और गायक पापनाशम शिवन से हुआ, जिन्होंने इस पवित्र नदी जैसी गायिका को अपने तमिल कृतियों का अमूल्य खजाना सौंप दिया। कर्नाटक संगीत के मंच पर जब पूरी तरह पुरुषों का प्रभुत्व था, तब पहली बार डीके पट्टम्माल ने मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करते हुए इस परंपरा को बदलने का साहस दिखाया। उन्होंने न केवल सार्वजनिक मंचों पर प्रस्तुति दी, बल्कि रागम तानम पल्लवी जैसी अत्यंत कठिन और उस समय तक केवल पुरुषों का क्षेत्र मानी जाने वाली इस शैली में भी प्रस्तुति दी। उस समय तक पुरुष कलाकार ये मानते थे कि ये महिलाओं के बस की बात नहीं है। रागम तानम पल्लवी कर्नाटक संगीत की वो विधा है जहां गणित की सटीकता, फेफड़ों की असीम शक्ति और कलाकार की कल्पनाशीलता की परीक्षा होती है। उस समय के पुरुष कलाकार ये मानते थे कि महिलाएं केवल सरल भक्ति रस से पूर्ण कीर्तन गा सकती हैं, लेकिन वो इस बौद्धिक चक्रव्यूह को नहीं भेद सकती। डीके पट्टम्माल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने न केवल रागम तानम पल्लवी को गाया, बल्कि संगीत के इतिहास की सबसे जटिल और लंबी ताल सिंहनंदन ताल, जिसमें 128 अक्षर यानी 128 मात्राएं होती हैं, तथा शरभनंदन ताल में ऐसी पल्लवियों का ताना बाना बुना कि बड़े बड़े मृदंग वादक भी चकित रह गए। उनकी प्रतिभा का इतना अधिक सम्मान था कि प्रसिद्ध मृदंगम वादक विद्वान पालघाट मणि अय्यर, जो कि परंपरागत रूप से केवल पुरुष गायकों के साथ ही संगत करते थे, उन्होंने डीके पट्टम्माल के लिए ये परंपरा तोड़ दी। उनकी गायन क्षमता को गुणीजनों ने बहुत मान दिया और उन्हें स्नेहपूर्वक डीकेपी अम्मा कहा जाने लगा। उनकी बेजोड़ तकनीकी महारत को देखकर कर्नाटक संगीत जगत ने उन्हें नया नाम दिया, पल्लवी पट्टम्माल।

सन 1939 में डीके पट्टम्माल का विवाह आर ईश्वरन के साथ संपन्न हुआ, जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचाना और उनकी संगीत यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण साथी बने। डीके पट्टम्माल ने देश की स्थिति को देखते हुए अपने स्वर को राष्ट्र आराधना का माध्यम बना दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी तमिल फिल्म त्यागभूमि में पहली बार पार्श्व गायन किया। इस फिल्म में उन्होंने सुप्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती के क्रांतिकारी गीतों को अपनी आवाज दी। ब्रिटिश सरकार बौखला गई और फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर सन 1947 में भारत आजाद हुआ। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। तब ऑल इंडिया रेडियो मद्रास के स्टूडियो में डीके पट्टम्माल तंबूरा लेकर खड़ी थीं। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, देश में रोमांच फैल गया। भारत आजाद हुआ और डीके पट्टम्माल ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती का अमर स्वतंत्रता गीत गाया, आडवो में पल्ली पाडवो में आनंद सुतंतिरम, जिसका अर्थ था, आओ हम सब मिलकर नाचें, आओ हम सब मिलकर गाएं कि हमें वो पावन स्वाधीनता मिल गई है।

उनकी आवाज में देश की आजादी का वो पहला जश्न तैर रहा था। इस गीत ने डीके पट्टम्माल को हमेशा हमेशा के लिए राष्ट्र की साझी चेतना का हिस्सा बना दिया। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के अनेक गीतों को उन्होंने अपना स्वर दिया, जो आज संगीत जगत की अमूल्य धरोहर हैं। डीके पट्टम्माल कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक मुथुस्वामी दीक्षितर की कृतियों की सबसे प्रामाणिक संवाहक बनी। दीक्षितर की कृतियां अपनी विशेष गति, दार्शनिक संस्कृत और बेहद सूक्ष्म गमकों के लिए जानी जाती हैं। डीके पट्टम्माल ने इन कृतियों के मूल स्वरूप को इस तरह से सहेजा जैसे किसी धरोहर को सहेजा जाता है।

डी के पट्टम्माल को तमिल फिल्मों में गीत गाने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने केवल भक्ति और देशभक्ति से जुड़े गीत गाना ही स्वीकार किया। फिल्म त्यागभूमि के बाद उन्होंने फिल्म इरुवर, रामराज्यम, वेधाल उलगम सहित कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। डी के पट्टम्माल केवल एक महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो एक महान संगीत गुरु भी थी। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्होंने स्वयं कर्नाटक संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। पिता के साथ संगीत सभाओं में गुणीजनों को सुन सुन कर ही उन्होंने संगीत सीखा था, लेकिन स्वयं उन्होंने अनेक कलाकारों को प्रशिक्षित किया। उनके छोटे भाई डी के जयरामन ने उनके मार्गदर्शन में संगीत शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर संगीत कलानिधि सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पुत्रवधु ललिता शिवकुमार को भी संगीत सिखाया, जो अक्सर मंच पर उनके साथ संगत करती थीं। और उनकी पौत्री और शिष्या नित्याश्री महादेवन आज कर्नाटक संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। डी के पट्टम्माल को संगीत कलानिधि, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके साथ ही उन्हें गान सरस्वती की उपाधि भी प्रदान की गई थी। 16 जुलाई सन 2009 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण संगीत विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, डीके पट्टम्माल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि छात्रों द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये जांच का विषय है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सिया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानो से मुलाकात करेंगे। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल समय से 2 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में कुल 3 दिनों में 23 घंटे सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान पूरा बजट पेश किए जाने के साथ ही 15 विधेयक भी पारित किए गए। चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती के अवसर पर आज अलीराजपुर जिले में चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित कृषि उपज मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर इन दिनों जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल, विदिशा और रायसेन सहित प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि शेष अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रही है। 10 दिवसीय इस आयोजन में भारत सहित 74 देश शामिल हो रहे हैं। इन खेलों में भारत के 125 खिलाड़ियों में भोपाल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साई के 4 जूडो खिलाड़ी, जिनमें महिला वर्ग में अस्मिता डे, श्रद्धा चोपड़े और पुरुष वर्ग में अवतार सिंह और यश घांगस भी शामिल हैं। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आज हमारे रेडियो का बर्थडे है। मनाएंगे आप हमारे साथ मिलकर? बिल्कुल, हम रोज़ रेडियो का बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि अगर ये रेडियो ना होता तो हमारी आपकी दोस्ती ना होती। बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे मन की हैं वो आप तक ना पहुंच पाती और आप हमसे मोहब्बत ना कर पाते। जी हाँ, ये जो हमारा आपका रिश्ता है ना, इसका माध्यम है ये रेडियो, और ये रेडियो 100 साल का होने वाला है। आज यानी 23 जुलाई के ही दिन 1927 को मुंबई से भारत में पहले व्यवस्थित और संस्थागत रेडियो के प्रसारण की शुरुआत हुई थी, और इस वर्ष भारतीय प्रसारण अपनी 100वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है, यानी 99 साल पूरे कर लिए हैं। अगला साल इसकी 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे। इस दौरान रेडियो ने मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM और डिजिटल तकनीक की बहुत लंबी यात्रा तय की है। आप में से बहुत सारे लोग अपने मोबाइल पर या तो FM के थ्रू या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ये प्रसारण सुन रहे होंगे, लेकिन आज हम OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ गए हैं। वेव का जो रेडियो चैनल है उस पर आप OTT पर हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। दरअसल ये जो लंबी यात्रा रही है, इसमें रेडियो ने भी बहुत कुछ सीखा है और भारतीय जनमानस ने भी रेडियो से बहुत कुछ सीखा है। इसी वजह से संवाद का भी और मनोरंजन का भी विश्वसनीय साधन है रेडियो। हम आपको बताएं कि भारत में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1926 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का गठन हुआ। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने जून 1923 में पहला रेडियो प्रसारण किया, जबकि कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना नवंबर 1923 में हुई थी। लेकिन भारत का पहला व्यवस्थित और संस्थागत रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को मुंबई से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने शुरू किया। इसीलिए हर वर्ष 23 जुलाई को हम मनाते हैं प्रसारण दिवस। ये जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी शुरू हुई थी, शुरू में सिर्फ 6 लाख रुपए की पूंजी से शुरू हुई थी, और इसको शुरू करने के लिए अंग्रेज सरकार से एक समझौता किया गया था 13 सितंबर 1926 को, और उसके बाद प्रसारण शुरू किया गया था। 4.5 लाख रुपए रेडियो केंद्रों की स्थापना में खर्च हो गए, और आय का जो मुख्य साधन इसके था, क्योंकि चलाने में खर्चा तो होना था, उस समय जो रेडियो सेट हुआ करते थे उसका 10 रुपये का लाइसेंस शुल्क था। चूँकि उस समय आज से 100 साल पहले 10 रुपये काफ़ी हुआ करते थे, इसलिए लाइसेंस लेने वाले लोग कम ही थे। सिर्फ 8,000 लाइसेंस ही जारी हो सके थे। 1.5 किलोवाट के ट्रांसमीटरों की सीमित क्षमता थी, और इसी कारण रेडियो का प्रसार बढ़ नहीं पा रहा था। ये जो कंपनी है 1930 में बंद हो गई। लेकिन भारत में आधुनिक रेडियो प्रसारण की मजबूत नींव रखने का श्रेय जाता है लॉर्ड लिनलिथगो और लायनर्ड फील्डन को। अप्रैल 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत हुई, और इसके बाद अगस्त 1935 में लायनर्ड फील्डन को इस सर्विस का कंट्रोलर नियुक्त किया गया, और उन्होंने इसे ऑल इंडिया रेडियो करने का सुझाव दिया, जिसे लिनलिथगो ने स्वीकार कर लिया। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से दिल्ली के अलीपुर के 6 कमरों से एक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। ये एक घर के 6 कमरे थे। कुछ महीने बाद ये दफ्तर दिल्ली के संसद मार्ग स्थित नए प्रसारण भवन में आया, और तब से लेकर आज तक दिल्ली केंद्र

का प्रसारण वहीं से होता है। भारत का सार्वजनिक रेडियो 3 मई 2023 से सिर्फ आकाशवाणी के नाम से जाना जा रहा है। इसे ऑल इंडिया रेडियो नहीं कहा जाता, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इसका नाम आकाशवाणी है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम गांधी जयंती के दिन 1957 में दिया गया था, जिसे उसके ठीक अगले दिन से लागू कर लिया गया। आकाशवाणी को तो आप जानते ही हैं। ये नाम मैसूर के विद्वान एम वी गोपाल स्वामी ने इसे दिया था। आज़ादी के बाद पहला रेडियो स्टेशन 16 जुलाई 1948 को शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था। आज आकाशवाणी बहुत विस्तृत है, लगभग 232 केंद्र हैं, 304 चैनल्स हैं, 756 ट्रांसमीटर्स हैं। इतना विशाल नेटवर्क है आकाशवाणी का, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है, सबसे बड़ा प्रसारक है। हमारे आपके दिलों की धड़कन तो है ही। तो चलिए, आज हम रेडियो प्रसारण शुरुआत होने का दिन मनाते हैं, प्रसारण का बर्थडे मनाते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम तेज़ कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको महसूस होगा कि 100 साल पुराना नाता है इस आवाज़ से जो आपके इस डब्बे से आ रही है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। चलो
3: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।
4: एक बार फिर कार्यक्रम के साथ हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग ग्वालियर। श्रोता साथियों, हम रोज़ कुछ ना कुछ नई बात आपके लिए लेकर आते हैं। आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रही थी, रिमूव वन थिंग यानी रिमूव टू इम्प्रूव, कोई भी चीज़ हटाइए खुद में सुधार के लिए। अब खुद में सुधार के लिए कोई एक चीज़ कैसे हटाई जा सकती है, ये हम अब हमारे व्यवहार की बात कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, कुछ भी हम नया अपने जीवन में करना चाहते हैं तो पुराने को हटाना होता है, इसे डीक्लटरिंग कहते हैं। पुराना कबाड़ आप घर से निकालेंगे नहीं तब तक नए के लिए घर में जगह नहीं बनती। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है जब, तो आप कुछ फाइल्स डिलीट करते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स डिलीट करते हैं, कुछ वीडियोस डिलीट करते हैं और वापस अपने फ़ोन में जगह बनाते हैं नई फ़ोटोग्राफ्स के लिए, नई फाइल्स के लिए, है ना। बस, और वो फ़ोटो हटाई जाती हैं, वो फाइल्स हटाई जाती हैं जो काम की नहीं हैं, बेकार हैं। हमारे जीवन की आदतों के साथ भी ठीक यही है। वो आदतें जो आपके काम की नहीं हैं, आपके व्यक्तित्व को ख़राब बना रही हैं, जिनसे आप भरा हुआ भारी महसूस करते हैं, उनको हटाइए और कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने व्यक्तित्व में जोड़िए। और इसी को कहते हैं

रिमूव वन थिंग टू इम्प्रूव, यानी एक चीज़ हटाइए अपने आप को बेहतर करने के लिए। ठीक इसी तरह यदि कोई वज़न कम करना चाहता है तो अपनी थाली में से कुछ चीज़ें हटाता बढ़ाता है। अब थाली में आपने अपने पेट भर जाने के लिए सामान रखा है खाने पीने का, आपको ये तय करना है कि आपके शरीर के लिए क्या बेहतर है, इसमें से क्या चीज़ हटाकर क्या चीज़ जोड़ी जा सकती है। और यदि आप सिर्फ जोड़ते रहेंगे तो एक दिन उस थाली को पूरा खाते खाते आपका पेट फट जाएगा, है ना। बैलेंस डाइट तो लेनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल देते हैं, आपके कपड़ों की अलमारी में जगह सीमित है, उसी सीमित जगह में नए फैशन के कपड़े यदि आपको लेने हैं तो पुराने फैशन के कपड़े या जो कपड़े अब आपको फिट नहीं आते या जो बदरंग हो चुके हैं वो आप हटाते हैं। हटाने से जो जगह बनती है उसमें आप नए फैशन के अपनी पसंद के कपड़े जोड़ लेते हैं। अपने विचारों के साथ, अपनी आदतों के साथ भी यही कीजिए। यदि हम पुरानी आदतों को जो अब ख़राब हैं या जो अब रेलिवेंट नहीं रह गई हैं या जो आपके व्यक्तित्व को ख़राब कर रही हैं उन्हें पकड़े रहेंगे तब तक नया सीखने के लिए तत्पर नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि नई नई चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करने के लिए, नए ज्ञान को सीखने के लिए पुराने को हटाना होगा, भुलाना होगा, तभी हम अपडेटेड रह पाएंगे, इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, तुलिका आपके साथ है। श्रोता साथियों, हम अक्सर किसी से मिलते समय बाकी सारी चीज़ें तो उसके बारे में जानना चाहते ही हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति काम तो कुछ करता है अपने पैसा कमाने के लिए या अपनी आजीविका के लिए, लेकिन उसकी हॉबी क्या है। हम हॉबी से सामने वाले को जज करना चाहते हैं और ख़ुद भी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई शौक ज़रूर पाला जाए, जिससे हम जब रोज़गार या नौकरी ना कर रहे हों तो हम अपना मन बहला सकें। और ये चीज़ आज से नहीं, बहुत पहले से है। यहाँ तक कि इंटरव्यूज़ में भी लोगों से हॉबीज़ पूछी जाती हैं, विशेष तौर पर फिर उस हॉबी के आसपास के सवाल किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी एस्पिरेंट से पूछे जाते हैं। ये हॉबी जो है हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी तो नहीं होती जा रही? बहुत से लोग ऐसे हैं जो शौक बोल करके ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे किसी से होड़ कर रहे हों। हॉबी स्टेटस सिंबल हो गया है, लेजर टाइम का प्लेजर नहीं रह गया। समाज को ये दिखाने का जरिया बन चुका है कि आपके पास पैसा है, वक्त है, ऊर्जा है, और सब कुछ होने के साथ साथ आप अपनी हॉबी को फ्लरिश कर पा रहे हैं। लेकिन क्या सच में इस हॉबी का आनंद आप ले पाते हैं इस होड़ के बावजूद? दरअसल छुट्टियों का मतलब, खाली समय का मतलब या फिर कोई खेल खेलने का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम मानसिक तौर पर ब्रेक लेना चाहते हैं। लेकिन ये ब्रेक परफॉर्मेंस बन जाता है, हॉबी भी परफॉर्मेंस बन जाती है, और जब हम फुर्सत के पलों में भी नंबर

मन बनने की होड़ करने लगते हैं ना, तो आराम के बजाय तनाव मिलने लगता है, खुशी के बजाय दुख मिलने लगता है, शरीर और मन दोनों थकने लगते हैं। बहुत सारे लोग अपनी हॉबीज़ को सोशल मीडिया पर स्टेटस सिंबल की तरह लगाते हैं और फिर उस पर आए हुए लाइक्स और कमेंट्स से अपना मनोरंजन करते हैं या अपना सुकून प्राप्त करते हैं। एक प्रदर्शन का लगातार दबाव उनके ऊपर बना रहता है और ये दबाव ही तनाव को जन्म देता है। कभी कभी फुर्सत के पलों में कुछ ना करना भी हमारे तनाव को बहुत कम कर देगा। फुर्सत के पलों में आराम करके देखिए, कुछ मत कीजिए, यूं ही टहलिए। ऐसे अनुभव आपको सही मायनों में खुशी देंगे।

0: はい。
1: और इस गीत के साथ ही अपनी दोस्त तुलिका को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं अखिलेश बघेल का ध्रुपद धमार गायन। आपके साथ पखावज पर संगत कर रहे हैं जयंत गायकवाड़। आइए सुनते हैं अखिलेश बघेल का गाया राग मेघ में ध्रुपद धमार।

अभी आप सुन रहे थे यखलेश बघेल का ध्रुपद गायन। आप प्रस्तुत कर रही थी राग मेघ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, जिले की चिट्ठी अब भोपाल से होगी।

के लिए 1212 बूथ बनाए गए। अभियान से पहले जन जागरूकता रैली निकाली गई और बाद में जन प्रतिनिधियों ने बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाकर अभियान का प्रारंभ किया। इसके साथ ही दस्तक अभियान की शुरुआत करते हुए बच्चों को विटामिन ए का घोल भी पिलाया गया तथा 31 अगस्त तक घर घर जाकर 1.5 लाख से अधिक बच्चों की स्वास्थ्य जाँच का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था भी इस दौरान सुनिश्चित की गई। बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तथा डायरिया की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान इन दिनों चलाया। मंदसौर और नीमच के संयुक्त प्रशिक्षण में स्वास्थ्य अमले को वाहक जनित रोगों की रोकथाम का भी प्रशिक्षण दिया गया। जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी महत्वपूर्ण पहल की गई। स्थानीय सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को विद्यार्थियों में मानसिक समस्याओं की प्रारंभिक पहचान, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता और आत्महत्या रोकथाम के विषय में प्रशिक्षित किया गया। जिले में विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण जागरूकता रैली निकाली गई, जबकि एड्स नियंत्रण समिति की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी जाँच पर भी विशेष जोर दिया गया। मंदसौर जिले में ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में भी कई नई पहल देखने को मिली है। स्वसहायता समूह से जुड़े उद्यमियों के लिए विशेष उद्यम पंजीयन अभियान चलाया गया, जिसमें उद्यम पंजीयन के दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी भी दी गई। इसी दौरान विकसित भारत जी राम जी योजना का भी जिले में शुभारम्भ हुआ। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का दौरा भी मंदसौर में पूरे महीने चर्चा में रहा। उन्होंने पिपलिया मंडी, कृषि उपज

0: मंडी में 1.77 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 32 कैश काउंटर दुकानों का लोकार्पण किया, जिससे किसानों को भुगतान प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है। गुड़बेली छोटी में 8.57 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन भी किया गया। वहीं गुर्जर बर्डिया में करीब 333 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्रीय विकास को गति देने का संदेश दिया गया। पिछले दिनों उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह का शामगढ़ क्षेत्र का निरीक्षण महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने यहां अस्पताल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मॉडल पंचायत भवन, सांदीपनी विद्यालय और ग्रामीण मार्गों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पंचायत व्यवस्था और जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। मंदसौर जिले के शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तब उठा जब मंदसौर विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर का नियोजित विकास, नई आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं, आधारभूत संरचना, निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। जिले में शिक्षा और युवा गतिविधियों में भी पूरे महीने उत्साह बना रहा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में दीक्षारंभ एवं प्रवेश उत्सव तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में श्रावण मास की तैयारियों को लेकर श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित हुई। मंदिर में दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्युत सज्जा, पालकी यात्रा, शयन आरती, यात्री सुविधाओं और सौर ऊर्जा पैनल लगाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही मंदसौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: आप सुन रहे थे मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख था दीपक शर्मा का और वाचन स्वर प्रशांत सेंगर का। यह आकाशवाणी
2: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका।

अभी आप सुन रहे थे राहत फ़तेह अली खान को, फिल्म थी आजा नचले, गीत जयदीप साहनी का, संगीत सलीम सुलेमान का था, पसंद आपकी। ख्याल बाज़ार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, और किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, वर्षा सुमन और माधुरी किरण। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं शीतल रेडियो श्रोता संघ बहरामपुर टैमा खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोकचंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समराज, आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं फुलचिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा,

मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह मुलानी और उनका पूरा परिवार। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर कैलाश खेर का गाया फिल्म सलाम इश्क का ये गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

पापॉन को अभी आपने सुना फिल्म सुल्तान में। इरशाद कामिल के गीत को संगीतबद्ध किया था विशाल शेखर ने। सुनना चाहते थे आप सब गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल जुनेब मुजावर, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, ग्राम संदलपुर आंतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव, और आप हैं हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के, और आप हैं खरियाढाणी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र बिजारनिया, राजपाल बिजारनिया, अभिषेक बिजारनिया, योगेश बिजारनिया, पूजा बिजारनिया, आरजू बिजारनिया और नव्या बिजारनिया। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर वरुण ग्रोवर का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे फिल्म दम लगा के हाइशा के लिए गाया है पापॉन ने।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

हमारी अधूरी कहानी। इस फिल्म में अभी आपने अमी मिश्रा को सुना। गीत कुणाल वर्मा का था, संगीत खुद अमी मिश्रा का। सुनना चाहते थे आप सब, आप हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा श्रीवास, अंजू और योगिता श्रीवास, यहीं से रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। बुल्ढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे, देवेंद्र भटकर। नई बस्ती गंजुनवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और मोहम्मद कली मंसारी। मधुबनी बिहार से साबिर परवाना, साजिद अली, जाहिद अली और शाहिद अली। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं कोलाम रोड हरगोबिंद नगर नवाशहर से सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रीतिशा संधू और मैक्स। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कमल कॉलोनी बड़वाह खरगोन से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर जयदीप साहनी का लिखा गीत, विशाल शेखर ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और फिल्म बेफिक्रे के लिए इसे गाया है पापॉन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आपने चिन्मयी श्रीप्रदा और शेखर रवजियानी को सुना। फिल्म थी हंसी तो फंसी। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत विशाल शेखर का, पसंद आपकी। जिला नांदेड़ ये तला, महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ जूही इकबाल, आमना आसमा परी, इकबाल अहमद और इमराद अहमद। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निन धाड़े और जय जिनेन्द्र। श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश सिंघई और उनके परिवार के सदस्य। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर अरिजीत और हर्षदीप कौर का गाया, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।

और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद। आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड से जयपाल इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर अरिजीत सिंह का गाया, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है ऐ दिल है मुश्किल।

पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें

साबित करेगी। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि छात्रों द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, यह जांच का विषय है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश की माटी के गौरव चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि उनका त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का संदेश हर भारतीय को देश सेवा के लिए प्रेरित किया करता है। अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी शामिल होंगे। भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉ यादव ने कहा है कि सरकार हर श्रमिक साथी के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र द्वारा आज भोपाल, विदिशा और रायसेन सहित प्रदेश के 38 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्वेता। आप सब कैसे हैं मित्रों? जब हमारी आपसे बातें होती है ना, तब हम आपकी कुशलता जानना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है आपकी भी इच्छा यही रहती होगी। यही हमारे व्यवहार की मुख्य बातें होती हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, उस व्यक्ति के व्यवहार से हमें अपनापन, संस्कार, इंसानियत जब नजर आती है, तो हम उसके व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसा व्यवहार हम भी चाहते हैं कि सभी हमारे लिए ऐसा ही करें। पर क्या हमने अपने व्यवहार पर गौर किया है? हमारे व्यवहार में ये सारी चीज़ें हैं, इंसानियत, मदद, अच्छे संस्कार। और हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, क्या हम स्वयं वैसा व्यवहार दूसरों को देते हैं? इसी बात पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। हमारे फ़ोन नंबर 2660902 और भोपाल के बाहर के श्रोता हमें एसटीडी कोड लगाएं 0755, और इस विषय पर हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपके विचारों का। हाँ जी, नमस्कार। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हेलो,
2: नमस्कार मैडम
1: जी। आपका हाँ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे। शेख सलीम जी। तो स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। आज हमने एक विषय रखा है कि जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे इंसान हमसे अच्छा व्यवहार करें, तो क्या हम अपना व्यवहार भी अच्छा रखते हैं दूसरों के लिए जैसा हम चाहते हैं?
2: मेरा अच्छा रखना चाहिए
1: जी। इससे क्या फायदे होंगे जब आप अपना व्यवहार भी अच्छा रखते हैं दूसरों से?
2: उससे फायदा ये रहेगा मैडम, प्यार बढ़ेगा, लड़ाई नहीं होगी, अच्छा वातावरण रहेगा।
1: हाँ, जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि देखो उसने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है ना। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों से भी करना चाहिए?
2: मैडम करना तो चाहिए
1: जी, बिल्कुल। और बताएंगे कुछ कि मतलब इस व्यवहार से आपको मतलब जीवन में क्या फायदा मिलेगा?
2: मैडम फायदे तो बहुत है ना, एकदम ये विषय पहले दिमाग में रहता तो बता देता। फायदे तो बहुत है, अच्छे व्यवहार से वातावरण अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है। किससे बात करो तो वो तारीफ अलग करते है कि भाई ये अच्छे लोग है। अब तुम खराब बात करोगे तो कहेंगे ना यार वो बहुत खराब लोग है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या है, हम अपने संस्कारों का परिचय भी देते हैं, है ना जी। तो आपसे हमारी बात हुई, हमें

0: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
1: आप श्रीपाद जाखड़े बोल रहे हैं, पुणे महाराष्ट्र से।
0: हाँ जी, आपका एक बार फिर से नाम बताएं।
1: श्रीपाद जाखड़े
0: जी।
1: श्रीपाद
0: जी, जी जी, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी।
0: आज का कार्यक्रम जिसमें आपका फोन लगा है वो है बात आपकी, गीत हमारे, है ना। और आज हमने एक विषय रखा है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम दूसरों से बहुत अच्छा व्यवहार चाहते हैं ना, कि दूसरे हमसे अच्छा बर्ताव करें, पर क्या हम स्वयं भी सभी लोगों के लिए वैसा ही अच्छा व्यवहार करते हैं? जैसे हाँ जी,
1: अपने ऊपर भी निर्भर,
0: हाँ, जैसे हमारी उम्मीद रहती है ना कि सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार रखे, पर क्या आप अपना भी व्यवहार अच्छा उसको देते हैं?
1: अपने ऊपर भी निर्भर करता है, कारण अपन समझो किसी से अच्छा व्यवहार रखते हैं तो वो सामने वाला अपने आप ही अच्छा व्यवहार करेगा, अपने को रिस्पेक्ट देगा, नहीं तो फिर अपन ही समझो रक्त व्यवहार करेंगे तो फिर वो कोई सामने वाले भी ऐसे ही सलूक करेंगे। फिर
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब हम अपने अच्छे व्यवहार का परिचय देंगे सामने वाले को, है ना, तो सामने वाला भी खुश होगा और आपकी बातचीत बहुत अच्छी होगी। और दूसरी बात यह है कि व्यवहार में हमारा संस्कार झलकता है, प्रति व्यक्ति का जो संस्कार है, जो उसके अच्छे गुण है वो जाते हैं जी।
1: एक बात और भी होती है
0: जी,
1: एक बात और भी कहना चाहता हूँ।
0: हाँ,
1: लोग क्या है, ऊपर से मीठा बोलते हैं पर वो अंदर से उनमें क्या

0: क्या है वो तो मालूम भी पड़ सकता
1: जी जी जी हाँ तो देखिए हाँ हाँ तो वो तो एक ऐसी बात हो गई कि आपको स्पष्ट रहना चाहिए है ना, सामने कहना चाहिए जो बातें हों, है ना। ये भी व्यवहार का एक कहना चाहिए एक मुख्य बात होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है ना, जो बात है उसे आप साफ साफ कहिए है ना। जी जी जी बहुत अच्छी बात। तो देखिए आपने फोन किया और जगह का नाम आपने बताया नहीं, कौन सी जगह से बोल रहे हैं आप, महाराष्ट्र? जी जी जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
0: आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
1: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ। हाँ जी जी जी जी है ना बिल्कुल। और हमें आज आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद मैम, आज फोन लगा, फोन करने का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी जी आपका नाम बताएं।
1: जी मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल ग्राम सिरसा।
0: जी सचिन जी बात कर रहे हैं सिरसा से।
1: मेरी बात की जी, आप कौन बात कर रहे हैं?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: अच्छा मैम,
0: और
1: आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है।
0: जी हमारी भी। हाँ जी जी तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, जैसे व्यवहार हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी बातों को सुने, समझे, है ना? तो क्या हम वैसा ही व्यवहार अपना दूसरों को देते हैं? कई बार क्या होता है कि हम बात करते हैं और सामने वालों को मौका तक नहीं देते बात करने का, उनकी बातों को सुनते नहीं है। क्या ये सही है?
1: नहीं,
0: ना?
1: मुझे पहले पहले सुनना चाहिए, उसके बाद में बोलना चाहिए, है ना?
0: हाँ। और व्यवहार ऐसा भी होता है कि जैसे हमें किसी का व्यवहार अच्छा लगा, उसने देखो कितना अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया, तो क्या वैसा ही हम अपना अच्छा व्यवहार सभी को देते हैं?
1: सभी को देना चाहिए।
0: इससे क्या होगा जीवन में?
1: एक अच्छा व्यक्ति बना जा सकता है, श्रेष्ठ नागरिक बना जा सकता है। है ना? और यदि हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो जी, नमस्कार बहन
1: जी। जी आपका नाम बताएं।
0: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अन्ना, जिला महोबा से बात कर रहा हूँ।
1: जी तो आपका जो फोन लगा है ना, वो है बात आपके गीत हमारे, है ना।
0: जी जी जी।
1: और आज हम बात कर रहे हैं अपने सभी रेडियो सुनने वालों से कि क्या आप जब अपना अच्छा व्यवहार, है ना, एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छा व्यवहार हमसे करे, है ना, हमारी बातों को सुने, तो क्या हम भी अपना अच्छा व्यवहार उनको देते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे अपन से सामने वाला अच्छा व्यवहार कर रहा है तो अपन को भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जी
1: हाँ,
0: ऐसा नहीं कि वो अपन से अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो अपन उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
1: हाँ हाँ, देखिए व्यवहार तो आपका व्यक्तित्व का परिचायक है। अगर आप अच्छी बोली बोलते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं, और आपके मन में अगर किसी के लिए अच्छी भावना है, इंसानियत है, तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी? क्या सोचते हैं आप?
0: जी आज हा? के समय में मतलब जो मीठे बोल बोले जा सकते हैं, सभी का दिल जीता जा सकता है बोलो बोल करके, वही इंसानियत है।
1: और हमें ये भी चाहिए कि हम उनकी मदद भी करें सामने वालों को, अगर किसी की मदद की जरूरत है। हाँ, तो ये सारी चीजें हमारे अच्छे व्यवहार में हो जाती हैं। मान लीजिए आप किसी लाइन में लगे हुए हैं और कोई एक जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको जल्दी कहीं जाना है या उसको जल्दी किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो आप अपनी लाइन में उनको खड़े कर दीजिए, है ना,
0: बिल्कुल आगे खड़ा कर देना।
1: हाँ, ये भी एक बहुत छोटी सी मदद हो सकती है। और आपके
0: ऐसा नहीं है कि जैसे कोई अपना खाली ओनली जान पहचान वाला है तो उसकी मदद करनी, किसी की भी करना चाहिए।
1: हाँ जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आपका नाम बताएं।
1: हमारा रमेश दिनकर है, सतना से।
0: रमेश दिनकर सतना से, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम एक विषय है जिस पर आपसे बात करना चाहेंगे कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, क्या वैसा व्यवहार हम खुद भी करते हैं दूसरों के लिए?
1: क्यों नहीं करते हैं, करते हैं,
0: है ना? बताएं, अगर आप सामने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों को सुने, हमसे हमारे लिए मदद करे, अच्छा बोले, तो क्या आप भी उनसे बोलते हैं?
1: जी, अच्छा बोलेंगे तो हम तो स्वयं बोलेंगे अच्छा।
0: और ये हमारे मानते हैं कि हमारे संस्कार, हमारे व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी पहचान होती है।
1: देखिए, जैसा संस्कार आदमी करता है वैसा मिलता भी है।
0: अगर आप अच्छा बोलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, बातों को समझते हैं, तो ये बहुत अच्छा गुण होता है आपके व्यवहार का। और अगर आप अच्छा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं, तो स्वयं भी आप चाहेंगे कि सबको हम अच्छा व्यवहार दें?
1: अच्छे से तो अच्छा ही मिलेगा जी।
0: जी बताएं, इसके क्या फायदे हो सकते हैं?
1: सब अच्छे से अगर चलेंगे तो अच्छा ही व्यवहार मिलेगा।
0: आप कहीं जाते हैं बाहर, तो आप कैसा व्यवहार रखते हैं अनजान लोगों से, अपरिचितों से, जिन्हें आप जानते नहीं?
1: नहीं, सब अच्छा ही व्यवहार रखते हैं। हम लोग का तो बाहर ही काम है, विज्ञापन लिखने जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर अच्छे से व्यवहार करेंगे, बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो सामने वाला भी आपसे अच्छे से तरह बात करेगा। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि वो तरीके से बात ना कर रहा हो, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार और बोली से वो प्रभावित हो जाए और अच्छा बोले। क्या लगता है आपको? चलिए,
1: आप दीदी कौन बोल रही?
0: मैं आपकी रेडियो दोस्त श्वेता बोल रही हूँ।
1: जी, आपसे हो चुकी है बात।
0: हाँ, लेकिन आपको ये बात तो मतलब कैसी लगी आपको ये बात कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार रखें?
1: ठीक है, लगी, बढ़िया बात है, लेकिन
0: बिल्कुल।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: हाँ जी,
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं कविता सतना से।
0: कविता जी बोल रही हैं, आपका पूरा नाम बताएं।
1: हम सतना से मध्य प्रदेश, कविता कंधारी।
0: जी जी, तो आज हमने एक विषय रखा है कविता जी की, जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं कि वो अच्छा करें, हमारी बातों को सुने, तो क्या हम भी वैसा अच्छा व्यवहार सभी को देते हैं वापस?
1: देना तो चाहिए।
0: बताएं आपको क्या अनुभव हुआ इस बारे में।
1: बोलिए, फिर से बोलिए।

0: आपको क्या अनुभव हुआ इस बारे में कि आपने किसी से उम्मीद करी वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, आपने भी दिया उसे वापस इतना अच्छा व्यवहार?
1: हाँ, हमारी तो आदत ये है, हम किसी से बुरा सोचते ही नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग चाहते हैं सामने वाला हमारी बातों को सुने, हमको समझे, हमारे लिए रहे, मदद करे, तो क्या हम स्वयं भी वैसे रहते हैं उसके लिए?
1: हाँ, हम तो ऐसे ही, हमारा स्वभाव तो ऐसा ही है।
0: क्या फायदे हो
1: हाँ,
0: सकते हैं इसके बताएं, अच्छे व्यवहार के?
1: अच्छे भाई बहुत हमारी तो, हम तो जब से मैंने शादी की है हमारे साथ तो बहुत अच्छा सबने किया है, मतलब हमारी मदद, जैसे हमारे घर का मतलब माहौल बहुत ही, और उसके हिसाब से तो हमारे साथ सबने अच्छा ही किया है।
0: बिल्कुल। और घर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, है ना, सभी के घरों में, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना अच्छा व्यवहार दें, जो हमारे संस्कार हैं उसको,
1: हाँ, भगवान में मस्त रहते हैं।
0: हाँ, उसे हम दें तो, और जिस तरह से हम सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं वही हमें देगा वापस।
1: नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है।
0: लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अच्छे व्यवहार के बहुत सारे फायदे होते हैं, मानती हैं आप?
1: हाँ, वो तो भगवान सुनता है ना सब। भगवान तो देख रहा है सबको।
0: हाँ, तो हमें हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, ये नहीं कि हम खुद ही बोले जा रहे हैं और सामने वाले को मौका ही नहीं मिल रहा है।
1: अरे, हम तो ऐसे होते हैं कि सामने वाला हमारी सुनता ही नहीं है, बोलते जाते हैं।
0: नहीं, आप बहुत अच्छी हैं और हम यही चाहेंगे कि आप अपने इस पर कायम रखें, अपने अच्छे व्यवहार को कायम रखें, यही आपकी पहचान है। तो देखिए कविता जी, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप कौन बोल रहे हो?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: बात की थी
0: जी, तो चलिए, आपका बहुत बहुत नमस्कार, है ना?
1: बहुत बहुत
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: जी आपकी जगह का नाम बताएं।
1: श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश।
0: जी तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं व्यवहार के ऊपर। अच्छे व्यवहार से आपको जीवन में क्या फायदे होते हैं बताएं। जैसे कि आप उम्मीद करते हैं सामने वाला आपको सुने, आपको समझे, है ना, अच्छा व्यवहार करे, तो क्या आप भी अपना अच्छा व्यवहार सभी लोगों को देते हैं?
1: जी, सही लोगों से तो सभी लोग सही से पेश आते हैं। अच्छा तो वो है जो बुरे से भी अच्छा बना के चले। और जब लाइफ चलता था तो उसमें कुछ लोगों के विचार सुन लेते थे, थोड़ा टाइम मिल जाता था, समझ लेते थे क्या बोलना है। अब ऐसे रिकॉर्डिंग में तुरंत बोलना पड़ता है तो
0: नहीं। देखिए, ये बहुत ही सामान्य सी बात है, है ना। जैसे कि हम तो अपने जीवन में दूसरों से अच्छा चाहते हैं कि वो हमसे अच्छा व्यवहार रखे, अच्छी हमारी बातों को सुने, तो क्या हम भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं?
1: जी, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे होता है। चाहता तो सभी अच्छे हैं,
0: हमारे
1: साथ अच्छा व्यवहार करे सामने वाला,
0: करते
1: हैं या नहीं ये नहीं समझते हैं लोग।
0: और ये समझना चाहिए आपको लगता है,
1: तो
0: है ना, क्योंकि जब हम अपना अच्छा व्यवहार लोगों को बांटेंगे तभी तो वो हमसे भी अच्छे से बात करेंगे, है ना। एक तरफा नहीं होती कोई भी चीज, मानते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: क्या करते हैं आप?
1: जी मैं किराने की दुकान चलाता हूँ।
0: जी जी जी
1: मैम, हो रही है मैम से बात हो रही है।
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: श्वेता जी, नमस्कार दोबारा से।
0: हाँ हाँ जी जी जी तो चलिए, आपने फोन किया, हमसे बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: नमस्ते जी, हमारा बहुत दिन में लगा जी आज फोन नंबर।
0: चलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका नाम बताएं।
1: कोमल विश्वकर्मा
0: जी,
1: तेंदुखड़ा जिला नरसिंहपुर से बोल रहे हैं जी।
0: जी जी जी, तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है और हम आपसे बतलाना चाहेंगे कि आज हमने एक विषय रखा है, उससे बातचीत कर रहे हैं। एक सामान्य सा विषय है, व्यवहार। तो आप कैसा व्यवहार करते हैं अगर सामने वाले?
1: हाँ, व्यवहार तो जी हमारे यहाँ बहुत परसों आरती हैं।

0: जी
1: जी
0: हाँ जी बताएं।
1: हम बहुत परस्वार्थी हैं जी।
0: हाँ हाँ।
1: और हम तो व्यवहार हमरोया सो बहुत ही ऊंचा व्यवहार है जी।
0: अच्छा, ऊंचा व्यवहार यानी?
1: ऊंचा व्यवहार ऐसा किसी बहन भाई होए,
0: हम्म,
1: उसको मानते चीकट चढ़ा,
0: हम्म, जी जी जी ये तो आपके घरेलू रिश्ते हो गए, है ना। जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं, है ना, बाहर वाले से ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपसे अच्छा व्यवहार करें, आपकी बातों को सुने।
1: भाई बहन के समान सबको मानते
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी अपना अच्छा व्यवहार उनको देते हैं वापस?
1: जी
0: बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। अनजान लोगों से आप कैसा व्यवहार करते हैं?
1: व्यवहार तो जी हमारे ऐसा है, बिल्कुल भाई बहन के समान, सिर्फ माँ नहीं मिलती संसार में
0: जी,
1: और पिताजी नहीं मिलते।
0: हाँ
1: हाँ, जो नंबर चल रहा है जी, रेडियो क्यों नहीं आ रहा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये कार्यक्रम रिकॉर्डेड है, आज हम आपके फोन जो बातचीत कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग होगी और कल आपको सुनाई देगा दिन में 11 बजे से। हाँ
1: अच्छा, कल
0: जी जी, आप जहाँ से बात कर रहे हैं बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा सा बाहर आके बात करिए,
1: है
0: ना जी जी जी।
1: हाँ जी, अच्छा हम उसमें नाम भी बोल सकते हैं जी?
0: अभी हम आपसे विचार जानना चाह रहे हैं, अच्छे व्यवहार से आपको क्या फायदा होता है अपने जीवन में?
1: नहीं जी, व्यवहार से बहुत फायदा होती है जी। व्यवहार से ये है, किसी अगर थोड़ा बहुत कोई बच्चे लोग गलत कर दे तो अपने व्यवहार के खातर कोई कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई कि आपके लड़के ने ऐसा किया, तो जैसे कहते यार आपके व्यवहार के खातर हमने कोई कार्यक्रम मतलब बच्चों से कुछ नहीं किया।
0: हाँ, वो ये मतलब समझते हैं वो लोग कि आपके अच्छे संस्कार और गुण बच्चे में होंगे, आप उन्हें समझाएंगे, है ना, ये वाली बात है। बिल्कुल, तो आप ये मानते हैं कि हमें अच्छा व्यवहार सभी लोगों के लिए करना चाहिए?
1: हाँ,
0: तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा।
1: हाँ जी, ऐसा ही है, मेरा परिवार भी, दो बच्चे हैं
0: जी जी जी,
1: उनके भी व्यवहार बहुत अच्छे, दुकान
0: बिल्कुल
1: सब्जी की।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल,
1: फर्नीचर का काम करता है जी।
0: अच्छा चलिए,
1: अच्छा
0: कल ये प्रोग्राम आपको दिन में 11 बजे सुनाई देगा, तो आपने फोन किया इसके लिए, हमसे विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो हमने जाना आपका व्यवहार निश्चित रूप से अच्छा व्यवहार, हम जो दूसरों से चाहते हैं लगभग वैसा ही व्यवहार हम दूसरों को दें, ये अच्छाई और इंसानियत की मिसाल होगी। हम यही आशा करते हैं कि दुनिया में कितना भी बदलाव आ जाए मगर हम अपने अच्छे व्यवहार को कायम रखेंगे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त आपकी रेडियो मित्र श्वेता को, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि छात्रों द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, ये जांच का विषय है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान व्यक्तित्व थे, उनके लेखन ने लोगों को नया आत्मविश्वास दिया और गौरव की भावना को और मजबूत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका संघर्ष, नेतृत्व और अद्वितीय योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। मध्य प्रदेश की माटी के गौरव चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के अवसर पर अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र द्वारा आज भोपाल, विदिशा और रायसेन सहित प्रदेश के 38 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये खूबसूरत गीत, जावेद अख्तर के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कांबले, रेखा कांबले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कांबले, और इसी गीत को सुनना चाहा था घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचालिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचौलिया ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमराज से। आवाज़ है महेंद्र कपूर की, साहिर के बोल हैं और संगीत रवि का। पसंद किया है राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और समस्त राजावत परिवार ने इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनका पूरा परिवार। आइए सुने हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हमें पत्र लिखा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। और एक और पत्र हमें लिखा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और महादेव केशरी ने। ये सभी सुनना चाहते हैं उमराव जान फिल्म की बहुत प्यारी सी गज़ल आशा भोसले की आवाज़ में। शहरयार के बोल हैं और तर्ज बनाई है खयाम ने।

पाकीज़ा, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू की पोल हैं और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ से देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित, छोटू, गुनगुन और उनका पूरा परिवार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है,

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। बारह बजकर 30 मिनट होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे धारावाहिक कामनी काय कांतारे का 8वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है।

कामिनी का एकांतरे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का आठवां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय छोड़ देते हैं और पैठार गांव आ जाते हैं। उधर राजा का प्रिय अश्व नीलमणि अवंती पहुंच जाता है। राजा भर्तृहरि पैठार से आगे जाना चाहते हैं, परंतु मेघों की तेज झड़ी ने उन्हें रोक रखा है। अब आगे

भर्तृहरि को पैठार गांव में पहुंचे 10 दिन बीत गए। 3 दिवस तो मेघों ने विश्राम ही नहीं किया, निरंतर झड़ी लगी रही और 3 दिन से आकाश में ठहरे रहकर कभी फुहारें छोड़ते, कभी पवन से अटखेलियां करते। अब वह वन, नदी, नालों का पानी उतरने और मार्ग के चलने योग्य हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गांव के लोग इन्हीं बहानों से उन्हें जाने नहीं दे रहे। किंतु क्या ग्रामणी का आग्रह तथा ग्रामजनों की प्रसन्न आत्मीयता ही उनके रुक जाने का एकमेव कारण है? सर्व सुख संपन्न गृह और राज्य को छोड़ने के पश्चात इस दूरस्थ विपन्न गांव में राजा भर्तृहरि को स्वयं के रोके जाने का आशय क्या कुछ और भी है? तभी वीरभद्र

0: प्रणाम देवता।
1: महाकाल कल्याण करे। कोई विशेष बात है मुखिया?
0: एक प्रार्थना है अवधूत महाराज।
1: कहें।
0: आज का दिन हम लोगों के लिए वर्ष भर की सुख समृद्धि की नींव का दिन होता है, कृषि कार्य के प्रारंभ का दिन। हलों के आगे आगे कन्याएं मंगल कलश लेकर चलती हैं और कोई पवित्र मान्य व्यक्ति खेतों में अक्षत बिखेरता है। देव कृपा से आप देवता स्वरूप हमारे मध्य हैं, तो एक अंजुरी अक्षत उगरने की कृपा करें, हम धन्य हो जाएंगे।
1: मुखिया, आप ये सम्मान गांव के ही किसी सुयोग्य जन को दें, मैं इस योग्य नहीं हूं। आप मुझे जाने क्या समझ बैठे हैं, मुझे इतने समय यहां नहीं रुकना चाहिए था।
0: मानता हूं महाराज, हमने आपको घर संसार की माया में रोक लिया, इंद्रदेव भी सहायक रहे, क्या पता कि ये विधाता का ही विधान हो। इतनी सी प्रार्थना और स्वीकृत कर लीजिए। शची, शची।
2: हाँ बाबा।
0: महाराज के स्नान का जल रख दे, आज अक्षत यही छीटेंगे।
3: क्या क्या सचमुच बाबा?
0: अपनी देह को संभाल बावरी, क्षमा करना महाराज, 20 की हो गई फिर भी अबोध और सावधान है। भाग गई, मैं चलता हूं ग्रामजनों को उत्सव के लिए एकत्र करने।

0: क्या यहां से आरंभ हो सकता है एक नया जीवन? इन वनवासियों की ही भांति कितना सहज, कितना अकृत्रिम। अकाल हो अथवा सुकाल, जो बीत गया सो बीत गया। भविष्य के प्रति इनमें उत्सुकता तो है, किंतु हाय हाय नहीं। और एक तुम हो राजा भर्तृहरि, पीढ़ियों की चिंता कंधों पर लादे हुए। कामिनी कंचन और भूमि की अनवरत भूख। कितनी स्त्रियां चाहिए तुम्हें, कितना स्वर्ण, कितना राज्य। एक पत्नी का मन वश में नहीं रख पाए तो भाग निकले, विराग से या फिर ईर्ष्या से। पूछो अपने आप से, पूछो।
1: देवता, जल रख दिया है, स्नान कर लें।
0: नहीं, मैं नदी तट पर जा रहा हूं, तुम अनावश्यक श्रम ना करो।
1: क्या मैं इतनी सी सेवा की योग्य भी नहीं?
0: नहीं नहीं, तुम तो योग्य से भी योग्यतर हो, मुझे प्रिय भी हो, किंतु
1: आपको मात्र प्रिय होने का सौभाग्य मैं जीवन भर सहेज लूंगी। मुझे ज्ञात है कि तपस्वी और सिद्ध माया मोह से दूर रहते हैं। उनके लिए स्त्री केवल माया है।
0: तुम्हें संसार का अनुभव बहुत कम है शचि। मैं वो नहीं जो बाहर से दिखता हूं, मैं एक भागता हुआ मनुष्य हूं। पुर से, परिजन से, परिचय से, अपने आप से भागता हुआ। इस वनग्राम के लिए मैं और मेरे लिए ये वनग्राम एक आकस्मिक संयोग मात्र है। तुम्हारे सामने जीवन का एक सुदीर्घ पथ पड़ा है। मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ।
2: शचि, शचि, शीघ्र निकल पुत्री, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: आई बाबा। बाबा, कलश कहाँ है?
2: अरे कलश वृंदा ने सजा लिया है, तू चल, चल तू, मैं महाराज को लेकर आ रहा हूँ।
1: जी।
3: महाकाल की
4: जय,
3: राम देवता की
4: जय,
3: सत्य विनायक की
4: जय,
3: महाकाल की
4: जय,
3: सत्य विनायक की
4: जय,
3: हरी माता की
4: जय,
3: हरी माता की
4: जय।
2: महाराज दाहिनी मुट्ठी में लेकर अक्षत राह पर दिखे।
5: भर्तृहरि को शिप्रा तट के बसंत उत्सव का स्मरण हो आया। वैभव, ऐश्वर्य और सौंदर्य से गर्वोन्नत कुलांगनाएं, जिनके लाक्षारंजित पदों से छिप्रा के तट रंगीन हो जाते हैं, स्वर्ण और रजत दीपों का प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन, वस्त्राभूषणों की उद्दीप्त मोहकता, कलाधरों के गायन वादन नृत्य और महापंडितों का मंत्रोच्चार, उज्जैनी जैसे अलकापुरी हो गई हो, भर्तृहरि जैसे इंद्र हो और रानी पिंगला हो गई हूँ। शची, मद और मदन से आरक्त रसिकों की अपनी अपनी प्रियतमाएं, अपनी अपनी शची।
2: अक्षत उलीचे देव।
3: महाकाल की
4: जय,
3: राम देवता की
4: जय,
3: सिद्ध विनायक की
4: जय।
5: देवताओं के जयकारे के स्वर गूंजने लगते हैं।
6: अवधूत महाराज, देवता की कृपा से आने वाला वर्ष शुभ संकेत दे रहा है। हलोत्सव के बीच अनेक शुभ संकेत हुए, फिर हमारी शची भी तो साथ थी। दो वर्ष ये अस्वस्थ रही, सो कलश यात्रा से भी वंचित भी रही, हमें अकाल भोगना पड़ा। इस बार उसने कलश धरा है शीश पर, आप देखना, इस बार मेघ ही नहीं भूमि पर श्री भी बरसेगी। हमारे ग्राम का सौभाग्य ये है कि इस बार साक्षात सिद्ध पुरुष के हाथों अक्षत छीटे गए हैं, अब काल देवता भी प्रभावी नहीं हो सकेगा।
1: देव, वृंदा भौजी कुछ कह रही हैं।
0: सुन रहा हूँ देवी शची।
1: भौजी सुना तुमने, तुम्हारे अवधूत ने मुझे देवी बना दिया है।
6: चुप रह बावरी चुप। देवों सिद्धों से परिहास नहीं करते, इसे क्षमा करें महाराज, बांस जैसी बढ़ तो गई है पर अबोध है
0: और असावधान भी।
6: किस चिंता में है देवता?
0: वृंदा देवी, आज शची कुछ अधिक वाचाल है।
6: उसका दोष नहीं है देवता, यौवन का आवेग ऐसा ही होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं?
0: तथापि सन्यासी के लिए आवश्यक नहीं कि वो किसी को बताकर स्थान छोड़े, किंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कल प्रातः मैं यहां से निकल जाऊंगा। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। जाने क्यों मेरा मन कहता है कि तुम मेरे बताए रहस्य को गोपन रखोगी, उचित है ना मेरा विश्वास?
6: ये विश्वास मेरे लिए वरदान है देवता।
0: मैं चाहता हूं कि तुम अनिरुद्ध को साथ लेकर मेरे पास आ जाओ।
6: अनिरुद्ध को लेकर? मुझे संदेह है, यदि पहले से कहूं तो कहीं निकल जाएगा, मैं उसे जानती हूं।
0: जानना ही चाहिए, तुम उसकी धर्म पत्नी हो।
6: धर्म? वो तो राजसेवक लूट कर ले गए। हम वनवासी अपने जीवन साथी का चयन स्वयं करते हैं, काम हमारे समाज में वर्ज्य नहीं है किंतु मर्यादित है। सहवास हमारे बीच की दैनंदिन प्रकृति है, किंतु सहवास से महत्वपूर्ण है विश्वास। अनिरुद्ध का मुझ पर और मेरा उस पर आकंठ विश्वास है, किंतु ग्लानि की एक फांस मन में धसाए बैठा है। राज दस्यों से वो मेरा न तो सम्मान बचा पाया और न मेरी कोख। उस ग्लानिवश वो उन्मादी हो गया, उन्माद में कुछ कर बैठता है और फिर पश्चाताप करने लगता है।
0: तो फिर मुझे उसके पास ले चलो, उससे मिलना मेरे लिए आवश्यक है।
6: तब तो उसे ही आना पड़ेगा, मैं लाऊंगी उसे। वृंदा उसकी पत्नी ही नहीं, मित्र और सहचर भी है। देवता, आज आपको मड़ैया में ही विश्राम करना है।
0: क्यों, कोई विशेष बात है?
6: मेरा दूर का बंधु बसंत उज्जैनी जाते हुए एक रात के लिए यहीं रुक गया है। आज वो अपने कवित्त गाएगा बांसुरी और मृदंग के साथ। आज गांव में उत्सव की रात है देवता।
0: कवि है? नाम क्या है उसका?
6: नाम है बसंत, चंद्रपुर में रहता है। उसकी प्रिया चारु मित्रा भी कवित्त कहती है, यूं कहे तो उसे उसी से ये विद्या भी मिली है। बसंत की साध है कि राजा भर्तरी को वो अपने कवित्त सुना पाए, इसीलिए वो उज्जैनी जा रहा है। राजा गुणीजनों का सम्मान करते हैं, स्वयं भी तो कवि है, विद्वान है। बसंत ने राजा भर्तरी के संस्कृत पदों को जनपदीय भाषा में लिखा है, चाहता है वो उन्हें सुने और बताएं ठीक है या नहीं।
0: मैं बसंत की कविता सुनना चाहूंगा।
6: ये उचित नहीं होगा महाराज, हम वनवासियों के यहाँ कोई भी उत्सव मदभान के बिना संपन्न नहीं होता। ग्राम जन कविता के प्रति जितने ललायित हैं, उतने ही मदभान के लिए अधीर भी। ऐसे में आपकी पवित्र उपस्थिति कैसे संभव बनेगी?
0: उचित है आप लोग उत्सव मनाएं, किंतु हमारे आग्रह से गुणी बसंत को अवगत करा दें।
2: महाराज, राजा, सन्यासी और गुणी तीनों हठीले होते हैं। बसंत भी आपको भर्तृहरि के पद सुनाने के लिए उत्सुक है, किंतु ये भी कह रहा है कि एक चषक भर मद के बिना स्वर की तंद्रा नहीं टूटेगी और आपके सामने आने में उसका संकोच बन गया है।

0: अब युवा वृद्ध सभी छक कर पिएंगे, कोलाहल करेंगे, चिल्लाएंगे ज्यादा, सुनेंगे कम, बहकेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे और अंत में पत्नियों पर लद कर घर लौटेंगे। यही इनका उत्सव है, उस शंखलता का त्योहार। अनिरुद्ध भी अब स्वतंत्र है, पहले मनमौजी और अब स्वतंत्र।
1: ग्रामणी है ना यहाँ, इसका अनुशासन सब मानते हैं, संभाल लेंगे।
2: खूब संभाल लेंगे, इनकी अब सुनेगा ही कौन। युवक युवतियों को छोड़ वृद्ध और अधेड़ भी उत्सव का बहाना खोजते हैं और ठीठ हो जाते हैं, और तब ग्रामीण वीरभद्र भी चालू हो जाएंगे, युवकों से छेड़ करेंगे और फिर बेसुध होकर वहीं लुढ़क जाएंगे।
3: चुप कर सचिव, चुप कर। महाराज, प्रहर भर रात्रि बीत गई है, आप चलकर विश्राम करें। शची कुछ अस्वस्थ लगती है और वृंदा भी श्लथ प्रतीत हो रही है। ये दोनों आपको आवास ले जाएंगी, वहां आप आराम करें।
2: और ग्रामणी वीरभद्र को उन्मुक्त छोड़ दें ताकि पीछे की होड़ का नेतृत्व कर सकें।
0: संयम शची, संयम, बहुत हुई तेरी ये प्रगल्भता। चलिए देव।
4: कोलाहल शांत करें, कृपया बोलचाल बंद करें, मैं प्रस्तुत हूँ, मेरी ओर ध्यान दें।
5: बांसुरी पर एक धुन बजाता है, कोलाहल शांत हो जाता है। बांसुरी की धुन रोक कर मृदंग पर थाप देता है, भीड़ चुप हो जाती है।
4: राजा भर्तृहरि के कुछ पद श्रवण करें।
6: हाँ हाँ सुनाइए।
7: धन्य हो, धन्य हो,
6: धन्य हो।
4: मैं ठहरा नदी, वन, पर्वत, मेघ, चंद्र, चंद्रिका और नायक नायिकाओं पर रचने वाला भाषा का साधारण तुकबंद, अज्ञानी और मूर्ख। मेरी प्रियतमा ही भर्तृहरि के श्लोकों को जानती पहचानती है। उसी ने कहा है कि यदि प्रिय मुझे कुछ कहना चाहते हो तो इन पदों को जनपदीय भाषा में ढालकर जनता के बीच गाओ। तो सज्जन वृंद श्रवण करें, राजा भर्तृहरि ने कहा है।
6: स्वागत है, स्वागत है,
8: सुनाइए।
1: मेरे पद ये सुनाएगा, ऐसा क्या है इन पदों में। इतने दिनों संयत में रखा मन विगत की ओर क्यों देख रहा है। क्या काव्य का आत्मराग विराग की ओर अग्रसर भर्तृहरि के पांव की श्रृंखला बनने जा रहा है। रुक रे मन, रुक, भर्तृहरि तेरे काव्य का क्या प्रयोजन, क्या अर्थवत्ता, कौन सी सार्थकता। वो अपनी भार्या तक को तो संतुष्ट नहीं रख सका,

0: न सुने गए काफी का इन निरक्षर वनवासियों पर ऐसा प्रभाव, इतना निरपेक्ष आग्रह। राजा और पुरुष के रूप में असफल भर्तृहरि, क्या यही है तेरे काव्य की सफलता? फिर श्रेयस्कर क्या है, राजा होना या कवि होना?
1: कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वृंदा और शची आपस में वार्तालाप कर रही हैं।
2: शची, प्रतीत होता है कि अवधूत अभी जाग रहे हैं।
3: सोए तो तुम भी नहीं हो भौजी, शायद प्रतीक्षा हो रही हो, चली जाओ।
2: अनिरुद्ध जानता है कि मैं मद की गंध सह नहीं पाती, एक समय में एक वृंदा या फिर मद।
3: भौजी, अवधूत कल चला जाएगा।
2: अवधूत ने कहा है कि उसे जाना ही है।
3: फिर मैं क्या करूं?
2: शची, मेरी बहना, बाढ़ यौवन काल में नदी उद्धत कर तर तीरों को फलांग कर मैदानों तक फैल जाती है, लेकिन जब पानी उतरता है तो पीछे क्या रह जाता है, क्या छूट जाता है? कीचड़, टूटे तटबंध, माटी में लिपटे हुए किनारों के पेड़, मटमैला पानी और सांसों को विदीर्ण करती ऊब भरी ये दुर्गंध, एक एक बड़ा सा पछतावा। सुन शची, नदी की बाढ़ की चिंता ग्रामणी को भी है, वो चाहते हैं कि तू किसी को चुन ले।
3: चुन लिया है मैंने भौजी।
2: और वो तुझे छोड़कर कहीं भाग निकला तो तू क्या करेगी?
3: उसके लौटने की प्रतीक्षा।
2: ओह, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, ग्रह त्यागी वापस लौटकर नहीं आते।
3: पर ये वैसा नहीं है भौजी, उसकी आंखों में राग है, अधर लोलुप है, भंगिमाओं में आमंत्रण है। भले वो कितना ही छुपाने का प्रयास करे, किंतु उसका पौरुष छुपा नहीं रह पाता।
2: शची, अपनी आतुरता को नियंत्रित कर, बहना मुझे एक वचन दे।
3: कैसा वचन?
2: ये कि तू उसके लौटने की प्रतीक्षा अधिकतम 3 वर्ष तक ही करेगी, और यदि वो लौट कर नहीं आया तो तू उस पुरुष से विवाह कर लेगी जिसे मैं बताऊं।
3: स्वीकार?
2: मैंने सोच लिया है कि मैं तेरी सहायता करूंगी, तेरी ही तरह वो भी इस समय असंभव की कामना में है, अस्थिर और चलायमान, ज्वार उतरे समुद्र की भांति, जब उसके हाथों में खाली शंख, सीपियां और मरी हुई मछलियां रह जाएंगी तो उसे लौटना ही होगा।
3: किसके विषय में कह रही हूँ भौजी?
2: अब उठ, घड़े में जल होगा, स्नान कर ले और उन्हीं वस्त्रों को पहन ले जो तूने उत्सव में धारण किए थे, अवधूत कल चला जाएगा।
3: भौजी, मुझे विश्वास है यदि जाएगा भी तो शीघ्र ही वापस भी आएगा।
2: विलंब न कर, अभी रात बीतने में एक पहर का समय है, अभी सारा जग सो रहा है, जाकर जगा ले अपने पुरुष को जो अवधूत की काया कंदरा में छुपकर सो रहा है।
3: मुझे भय लगता है।
2: मन को साध, प्रातः अवधूत चला जाएगा और उसके साथ ही ये भय भी और उहापोह भी।

0: कौन कौन हो देवी जो योगी को विचलित करके भोग की कीचड़ में खींच रही हो?
1: मुझे ज्ञात है कि तुम केवल योगी नहीं हो।
0: तुम शची, तुम शची, अनर्थ हो जाएगा। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं।
1: मैं जानती हूं कि तुम पुरुष हो।
0: शची, तुम चाहती क्या हो? कोई देख लेगा तो?
1: कोई नहीं देखेगा। मैं रतिदान चाहती हूं, मुझे स्वीकार कर लो। निराश कर दोगे तो भी इसी क्षण आत्महत्या कर लूंगी। तुमने मेरे तीक्ष्ण कटार की चपलता देखी है ना? बोलो बोलो, क्या स्वीकार है, मैं अथवा मेरा शव?
2: शची ये कहकर भरथरी के वक्ष में सिर गड़ाकर सिसकने लगती है। भरथरी भी कामा सख्त हो जाते हैं। शची थरथराते हुए अधर से कहती है,
1: एक रात और रुक सकोगे तपस्वी?
0: ये उचित होगा क्या शची?
1: और नहीं कहूंगी रुकने के लिए, बस एक रात और।
0: फिर मिलना संभव होगा क्या?
1: हाँ होगा, वृंदा भौजी संभव बनाएगी, आज भी उन्हीं ने ये संभव किया है।
0: एक रात यदि रुका भी तो तत्पश्चात तो मुझे जाना ही है। तब
1: लौटने के लिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी।
0: तुमने तो ये भी नहीं जाना कि मैं कौन हूं।
1: जोगी जति का कोई नाम कोई ग्राम होता है क्या? लेकिन मैं तुम्हें खूब जानती हूं, जान गई हूं।

0: प्रातःकाल शची उल्लासित स्वर में वृंदा को बताती है,
1: वृंदा भाजी, वृंदा भाजी, जाग रही हो क्या? अब तो ताज नहीं जा रहा है, एक रात और वो यही रहेगा।
2: तेरे स्वर की खनक बता रही है कि तार कस दिए हैं। मैं जान गई हूँ
1: भाजी।

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 8वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार दिव्या शुक्ला, वीरभद्र राकेश चैमिनी, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, शचि विभा श्रीवास्तव, वृंदा सरोज शर्मा, बसंत बालेंद्र सिंह, संयोजक राकेश ढौंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर पैठार गांव आ जाते हैं। यहां ग्रामीण तरुणी शचि से उनका मिलन हो जाता है। आपको ये भी याद होगा कि जब राजा वृक वन से जा रहे थे तो एक अपरिचित ने उनके प्राण बचाए थे और उनके प्रिय अश्व को आचार्य नागदत्त के आश्रम में बांध दिया था और यहाँ से वो अश्व सकुशल अवंती पहुंच जाता है। कौन है वो अपरिचित जो राजा के प्राण बचाता है, अश्व नीलमणि को अवंती तक पहुंचाने की युक्ति सुझाता है। अगले भाग में हम उसी अपरिचित से परिचय प्राप्त करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत कामिनी काय कांतारे का 8वां भाग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि छात्रों द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, ये जाँच का विषय है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान व्यक्तित्व थे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका संघर्ष, नेतृत्व और अद्वितीय योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। मध्य प्रदेश की माटी के गौरव चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आज बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे। भारतीय मजदूर संघ स्थापना दिवस की सभी श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर श्रमिक साथी के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 38 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। शेष अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजा है। और ये समय है महिला कार्यक्रम का। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार सखियों, महिला सभा सुन रही सभी सखियों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आपकी सखी शालिनी श्रीवास्तव। सखियों, बारिश की ठंडी हवा, बादलों की छाव, पंक्षियों की मधुर चहचहाहट हमें यह बताती है कि प्रकृति हर दिन एक नई शुरुआत करने का अवसर हमें दे रही है। आज हम इस नई ऊर्जा के साथ कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो हमारे ज्ञान, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को और मजबूत बनाती हैं। सखियों, जब विचार में सकारात्मकता होती है, शब्दों में मधुरता होती है और जानकारी सही होती है तो समाज जागरूक होता है। सखियों, बादल जब बरसते हैं ना तो केवल धरती ही नहीं महकती बल्कि मन भी नई ऊर्जा से भर जाता है। उसी प्रकार प्रेरणादायक विचार केवल सुनने के लिए नहीं होते, वे हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, शब्दों में वह शक्ति होती है जो दिलों को जोड़ सकती है, विचारों को बदलकर नई चेतना ला सकती है। तो शब्दों की शक्ति का सबसे सशक्त माध्यम रेडियो ही तो है जो शब्दों के द्वारा हमें आपस में जोड़े रखता है। सखियों, आज 23 जुलाई है जिसे भारतीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक तिथि नहीं बल्कि उस विश्वास का उत्सव है जिसने दशकों से करोड़ों लोगों तक ज्ञान, सूचना, प्रेरणा पहुंचाई है। सखियों, यह रिश्ता इतना पुराना है कि जब गांव तक सड़कें भी नहीं पहुंची थीं, तब भी रेडियो की आवाज लोगों के घरों तक पहुंचती थी। जब संचार के आधुनिक साधन नहीं थे तब भी रेडियो किसानों को खेती की सलाह, विद्यार्थियों को शिक्षा, महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी, हम सबको सरकारी योजनाओं की जानकारी, देशवासियों को समाचार तथा राष्ट्रीय घटनाओं से जोड़ने का कार्य करता था। सखियों, आज भले ही मोबाइल इंटरनेट का युग हो पर रेडियो की विश्वसनीयता और अपनापन आज भी बरकरार है। रेडियो की आवाज़ मन की बात है, इन बातों में विश्वास है। महिला सभा जैसे कार्यक्रम हमारी सखियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा व आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक तो करते ही हैं, सही जानकारी से प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। रेडियो ही तो है सखियों जो हमारे श्रोताओं और हमारे बीच सेतु का कार्य करता है। यह केवल आवाज नहीं विश्वास की वह धड़कन है जो हर घर, हर दिल, हर पीढ़ी को जोड़ती है। सखियों, समय बदला, तकनीक बदली, संचार के साधन भी बदले, लेकिन रेडियो की आत्मीयता, विश्वसनीयता आज भी जीवंत है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो सखियों, क्यों ना हम भी अपने मन के रेडियो को बजने दें। आइए सुनते हैं फिल्म रेडियो से, जिसमें स्वर दिया है हिमेश रेशमिया ने, गीत है मन का रेडियो।

0: सखियो, जिस प्रकार रेडियो की आवाज हमारे मन तक पहुंचती है, उसी प्रकार हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान की गूंज भी हर भारतीय के मन में भी सुनाई देती है। जब इतिहास के स्वर्णिम पन्ने पलटे जाते हैं तो कुछ नाम सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि श्रद्धा से स्मरण किए जाते हैं। उन्हीं में से एक अमर नाम है चंद्रशेखर आजाद जी का। सखियो, आज 23 जुलाई का दिन भारत के इतिहास का गौरवशाली दिन है। आज ही के दिन अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी शासन के समक्ष कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। सखियो, उन्होंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्त वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। देश की सेवा हम युद्ध भूमि में जाकर तो कर ही सकते हैं, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाकर भी की जा सकती है। सखियो, रेडियो जन जागरण व जन स्वास्थ्य का सशक्त साथी है। और सखियो, हमारे जीवन की सशक्त साथी हैं हमारी आंखें। इन्हीं आंखों से हम प्रकृति की सुंदरता, अपनों की मुस्कान और जीवन के अनगिनत रंगों का आनंद लेती हैं। सखियो, बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद की समस्या, यह है हमारी आज की भेंटवार्ता का विषय। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ब्रजेश चौधरी। इनसे बातचीत की है डॉक्टर आशा पारे जी ने।
1: बहनों, आंखें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और ये आंखें ईश्वर का दिया हुआ इतना खूबसूरत उपहार है जो हमें इस दुनिया की सुंदरता को निहारने के लिए मिला है। इन आंखों की बदौलत हम ढेर सारे सपने देख सकते हैं और इन सपनों को साकार भी कर सकते हैं। लेकिन बढ़ती हुई उम्र में कुछ परेशानियां आती हैं और ये भी देखा गया है कि बढ़ती हुई उम्र में अक्सर मोतियाबिंद की तकलीफ होती है। तो इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर ब्रजेश चौधरी जी, जो हमें जानकारी देंगे कि बढ़ती हुई उम्र में मोतियाबिंद कैसे होता है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मोतियाबिंद क्या है, क्योंकि लोगों में इसको लेकर बड़ा डर है।
2: मोतियाबिंद आँख का एक पारदर्शी सतह होता है जिसके अंदर से लाइट पास होती है और जो पर्दे पे जाती है और जिससे आदमी देख पाता है। इस पारदर्शी सतह का अपारदर्शी होना ही मोतियाबिंद कहलाता है।
1: अच्छा, मतलब ये पहले से उपस्थित रहता है हमारी आँख।
2: मोतियाबिंद की जगह जो है वो पारदर्शी है और वो अपनी जगह पे है
1: जी।
2: वो पारदर्शी जो प्रोटीन है वो अपारदर्शी हो जाता है तो उसके अंदर से लाइट पास नहीं होती
1: जी।
2: तो एक दीवाल खड़ी हो गई, लाइट अंदर नहीं गई पर्दे तक
1: जी।
2: तो फिर आपको दिखना बंद हो जाता है,
1: तब वह रोग में आता है,
2: तब वो मोतियाबिंद का रोग कहलाता है
1: जी। मोतियाबिंद होने के क्या कारण है?
2: मोतियाबिंद ज़्यादातर तो उम्र के हिसाब से होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मोतियाबिंद बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं
1: जी।
2: और ज़्यादातर 50 के बाद की उम्र में ही मोतियाबिंद होता है। लेकिन कुछ अन्य कारण भी है, जैसे चोट लगने से मोतियाबिंद होना
1: जी।
2: कुछ मोतियाबिंद पैदाइशी होते हैं, कुछ शक्कर की बीमारी डायबिटीज जिनको रहता है उनको भी समय से पहले मोतियाबिंद हो जाता है
1: जी।
2: तो अनकंट्रोल डायबिटीज हो तो मोतियाबिंद के चांसेस समय से पहले ज्यादा रहते हैं।
1: अच्छा, ये चोट लगने से जो आपने बताया, तो क्या आंखों में चोट लगने से या सिर की किसी
2: नहीं, नहीं आंख के चोट से ज्यादातर चांस रहते हैं। वैसे कई बार सिर के चोट जो आंख तक उसका प्रभाव रहता है उससे मोतियाबिंद होता है। चोट लगने से मोतियाबिंद का जो पारदर्शी प्रोटीन है वो अपारदर्शी प्रोटीन में बदल जाता है तो उससे भी मोतियाबिंद हो जाता है।
1: तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बढ़ती हुई आयु में ही मोतियाबिंद हो।
2: ज्यादातर तो बढ़ती हुई आयु से ही मोतियाबिंद होता है और अपन समाज में उसी रूप में उसको जानते हैं
1: जी।
2: लेकिन बाकी कुछ अन्य कारण हैं जो एक चर्चा के तौर पे मैंने आपको बता दिया, वो कारण कम है। मान के चलिए 10% वो कारण है, बाकी 90% तो उम्र का ही मोतियाबिंद रहता है।
1: अच्छा, आपने एक बात बताई कि जन्मजात भी होता है कुछ बच्चों में, पैदाइश के समय भी होता है।
2: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके क्या कारण हो सकते हैं?
2: ज्यादातर इसमें माता ने प्रेगनेंसी के दौरान कुछ दवाई ऐसी गर्म खाई हो जो नुकसान कर जाए
1: जी।
2: तो वो जो मोतियाबिंद का डेवलपमेंट होता है वो पारदर्शी प्रोटीन की जगह पे वो प्रोटीन अपारदर्शी हो जाता है।
1: अच्छा।
2: तो बच्चा मोतियाबिंद के साथ ही पैदा होता है।
1: मतलब माता से आने वाली तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है ये?
2: माता से आने वाली बीमारी नहीं, बट कुछ दवाइयों का रिएक्शन जो रहते गर्म दवाई उससे ज्यादातर होता है।
1: अच्छा,
2: बाकी
1: अच्छा।
2: कुछ कारण तो कई बार ऐसे भी होते हैं जो आप सीधे तरीके से उसको जोड़ नहीं पाते
1: जी जी।
2: कुछ अज्ञात कारण भी होते हैं पैदाइशी मोतियाबिंद के
1: जी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं?
2: जी हाँ, जैसा हमने बताया, एक पैदाइशी मोतियाबिंद हो गया, एक चोट लगने से हो गया, एक आपका केमिकल रिएक्शन से हो गया, दूसरा आपका ये डायबिटीज से हो गया, उम्र के हिसाब से हो गया, इस तरह से कई प्रकार के मोतियाबिंद होते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे ज़रूरी यह है कि हम इनसे बचने के उपाय जान लें।
2: कुछ उपाय जो 10% थे वो बचाए जा सकते हैं, जैसे माता गर्भावस्था के दौरान जो दवाइयाँ लें वो सोच समझ के लें, डॉक्टर से पूछ के लें, गर्म दवाइयाँ नहीं लें, ये हो गया। जो चोट लगने वाला मोतियाबिंद है, जितनी संभव हो सके आँख को चोटों से बचाएं। डायबिटीज का मोतियाबिंद है
1: तो बढ़ती उम्र में तो डायबिटीज का ही खतरा बढ़ता है।
2: हाँ, डायबिटीज का जो मोतियाबिंद है, तो डायबिटीज जब आपका अनकंट्रोल लंबे समय तक रहता है तभी मोतियाबिंद होता है। कंट्रोल रहेगा तो मोतियाबिंद कोई जरूरी नहीं कि समय से पहले आ जाए।
1: अच्छा,
2: और जो उम्र का मोतियाबिंद है वो तो उम्र के साथ होगा। और मोतियाबिंद कोई डरने की बीमारी नहीं है, किसको हमेशा इससे डरा जाए।
1: लेकिन फिर भी जब जानते हैं कि बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद होता है, तो कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं क्या कि मोतियाबिंद हो ही ना?
2: नहीं, ऐसे कोई उपाय नहीं है। मोतियाबिंद सभी को होना है, किसी को समय के पहले होता है, किसी को लेट होता है, और कई सारे उसके अपने अपने फैक्टर्स रहते हैं। कुछ परिवार में मोतियाबिंद 40 साल की उम्र में होता है, सभी को होता है, पापा को हुआ, फिर उनके बच्चे को हुआ, फिर उनके बच्चे को हुआ, तो कुछ वंशानुगत भी है, कुछ को जल्दी होता है। कई परिवार में 90 साल तक मोतियाबिंद नहीं होता, और 90 साल के बाद दादाजी की डेथ हो गई, उनको मोतियाबिंद नहीं हुआ, उनके बच्चे को उम्मीद रखनी चाहिए कि उनको भी नहीं होगा।
1: जी,
2: तो इसमें बचने का कुछ नहीं है, वंश के हिसाब से होता है, सबका अलग अलग है।
1: जी जी, तो इसके निदान क्या हो सकते हैं?
2: मोतियाबिंद का पूरी दुनिया में एक ही निदान है, वो है ऑपरेशन। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन आजकल काफ़ी सुरक्षित हो गया है, काफ़ी फास्ट हो गया है।
1: जी,
2: यहाँ तक कि आपका ऑपरेशन के 2-4 घंटे बाद छुट्टी भी दे देते हैं, और ऑपरेशन के 1-2 घंटे पहले भर्ती रखते हैं, तो टोटल आपका हॉस्पिटल स्टे यानी अस्पताल में रुकने की प्रक्रिया 4-6 घंटे की रहती है।
1: जी,
2: बाकी तैयारियां जो रहती है उसमें सिंपल रहता है, खून की जांच, हार्ट की जांच, थोड़ी बहुत जांच करवा लेते हैं कि आपको हाइपर ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और शुगर, डायबिटीज, ये सब बीमारी नहीं है, और है तो कंट्रोल में।
1: मतलब टांके वाले ऑपरेशन अब नहीं होते,
2: टांके का समय खत्म हो चुका है। अब तो सारे ऑपरेशन इवन मतलब जो देखिए आप सरकारी में होते हैं, फ्री के ऑपरेशन होते हैं, वो भी बगैर टांके के होते हैं।
1: वो लेजर वाले जो ऑपरेशन,
2: लेजर वाले जो हैं, जिनको फैको ऑपरेशन बोलते हैं, वो तो बगैर टांके के होते ही हैं। उसके अलावा एक नॉन फैको भी बगैर टांके का ही चल गया है, जिसमें फैको प्रोसीजर तो नहीं रहता लेकिन टांके उसमें भी नहीं लगते हैं।
1: तो इन ऑपरेशनों में सफलता के क्या 100% चांसेस होते हैं?
2: करीब करीब हाँ, आजकल काफ़ी कुछ सफलता के चांस रहते हैं। अगर केस सिलेक्शन यानी किसको करना है, कब करना है, टाइमिंग, मरीज की तैयारी, सब कुछ जो बोलते हैं हम लोग के ऑपरेशन में टाइम तो बहुत कम लगता है, 15 मिनट का ऑपरेशन है, लेकिन इसकी तैयारी 15 घंटे की है।
1: जी,
2: तो तैयारी का अगर ठीक ठाक रहा तो सफलता के 100% चांसेस रहते हैं, काफ़ी सुरक्षित हो गया ये ऑपरेशन। जी,
1: एक बात और सुनने में आई है कि मोतियाबिंद पक जाता है उसके बाद ही उसका ऑपरेशन होता है, तो ये क्या होता है?
2: हाँ, ये प्रक्रिया तब थी जब आँखों में लेंस नहीं डाले जाते थे।
1: जी,
2: जब लेंस नहीं डाले जाते थे तो मोतियाबिंद पकाते थे और मोतियाबिंद को बाहर निकाल लेते थे, टांके लगा लग जाते थे, बाद में वो टांके कटते थे और मोटा चश्मा 10-12 नंबर का चश्मा पहले लगाया जाते थे। वो आज से 20 साल या उसके ऊपर की बात हो गई। पिछले 20 साल में तो लेंस का ऑपरेशन सब जगह काफ़ी कॉमन हो गया और सुरक्षित हो गया और सफल हो गया है।
1: जी,
2: उसमें मोतियाबिंद कभी पका के ऑपरेशन नहीं किया जाते।
1: अच्छा,
2: कि पकाने के बाद फिर लेंस डालने के लिए जो हमें झिल्ली चाहिए, जगह चाहिए, वो जगह उतनी मजबूत नहीं रह जाती, तो लेंस डालने में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए समय रहते और हल्का सा पकने के पहले के स्टेज में, या जब आपकी नॉर्मल दिनचर्या में तकलीफ हो रही हो।
1: जी,
2: आजकल बहुत अच्छी रोशनी भी रहती है किसी को, लेकिन दिनचर्या में तकलीफ होती है तो उसको मोतियाबिंद निकाल देते हैं।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इसके लिए कब परीक्षण करवा लेना चाहिए, जैसे आंखों में धुंधलापन या दिखाई देने में कुछ कमी हो?
2: आंखों का परीक्षण हर एज में अलग अलग कारणों से करवाए जाते हैं।
1: जी,
2: स्कूल एज ग्रुप में आप देखिएगा, 6 साल के बच्चों का गवर्नमेंट ने हर जगह कंपलसरी कर दिया एक आंख की जांच करवाने का, क्योंकि उस समय चश्मे का नंबर लगता है।
1: जी,
2: कई बार उसी समय पता चलता है कि एक आंख में मोतियाबिंद है, कई बार माता पिता को पता नहीं चलता एक आंख से बच्चा देख रहा है। अच्छा, जब स्कूल में जांच होती है तो पता चलता है कि एक आंख में मोतियाबिंद निकल आया।
1: जी,
2: तो मोतियाबिंद का परीक्षण एक मोतियाबिंद के नाम से अलग से करवाना है, तब तो 40 के बाद होते ही हैं।
1: अच्छा,
2: और 40 का नॉर्मल परीक्षण इसलिए भी होता है कि लोग चश्मे के नंबर के लिए जाते हैं, उनको पढ़ने का चश्मा लगने लगता है तो पता चल जाता है। और 40 के पहले ये सिर्फ चश्मे के नंबर के नॉर्मल या जो स्कूल एज में जो चश्मे के नंबर की जाँच होती है उस जाँच में आपको मोतियाबिंद का पता चल जाता है।
1: तो क्या चश्मे का नंबर तेजी से बढ़ता है, ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है?
2: जी हाँ, चश्मे का नंबर तेजी से बढ़ने में एक मोतियाबिंद का बढ़ने घटना जो भी हो, कई बार घटता भी है मोतियाबिंद का नंबर।
1: अच्छा,
2: या और चश्मे का नंबर तेजी से बढ़ना मोतियाबिंद का लक्षण भी है और शुगर, डायबिटीज का भी लक्षण है।
1: अच्छा, और क्या क्या सावधानी ऐसी ली जा सकती है जिससे इस बीमारी से बचा जाए या फिर जल्दी से जल्दी उबर जाए इस बीमारी से?
2: कुछ नहीं है, जब आपको मोतियाबिंद डिक्लेयर हो जाए, डॉक्टर ने बता दिया मोतियाबिंद है, समय रहते उसका ऑपरेशन कराइए, क्योंकि समय रहते ऑपरेशन में नज़र के चांसेस उम्मीद ज़्यादा रहती है। समय बीत जाने के बाद कई बार मोतियाबिंद ज़्यादा पक जाता है तो कांच बिंद बदल जाता है।
1: अच्छा।
2: कांच बिंद होने के बाद फिर उसका ऑपरेशन में सफलता की उम्मीद भी कम रहती है और बाद में वहाँ कुछ ना कुछ दर्द देती रहती है। कांचे बिंद हुआ यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आगे आती रहनी।
1: मतलब ये मोतियाबिंद के बाद की स्थिति कांच बिंद है।
2: हाँ, कांच बिंद एक अकेले अलग से भी होता है और एक मोतियाबिंद ज़्यादा पकने के कारण कांच बिंद होता है।
1: अच्छा।
2: तो समय रहते ऑपरेशन करा लें तो आपको दोनों फायदा है, नज़र का फायदा और कांच बिंद के खतरे से भी आप बच जाते हैं।
1: बच जाते हैं, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी से बचने के बारे में और किस तरह से सावधानी बरती जा सकती है इस बारे में हमारी बहनों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सखियों, आज की इस सार्थक चर्चा से यही संदेश निकलकर सामने आता है कि आँखें हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा और नियमित देखभाल हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सखियों, छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर, संतुलित आहार लेकर, स्क्रीन का सीमित उपयोग करके, समय समय पर नेत्र परीक्षण कराकर हम अपनी दृष्टि को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। तो सखियों, अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर ब्रजेश चौधरी से बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद की समस्या विषय पर भेंटवार्ता। इनसे बातचीत की थी डॉक्टर आशा पारे ने। सखियों, इतिहास के पन्ने बताते हैं कि महान क्रांतियां पहले विचारों में जन्म लेती हैं, फिर कर्म में बदलती हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के विचारों ने स्वराज की मशाल जलाई और चंद्रशेखर आजाद जी जैसे वीरों ने अपने बलिदान से उस मशाल को कभी बुझने नहीं दिया। सखियों, एक ओर चंद्रशेखर आजाद जी का अदम्य साहस था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का नेतृत्व, एक ने कर्मों से राष्ट्र को प्रेरित किया, दूसरे ने अपने विचारों से पूरे देश को स्वतंत्रता का मंत्र दिया। सखियों, आज हम सभी भारत देश के इन दोनों अमर सपूतों की जन्म जयंती पर नमन करते हैं व इनके विचारों से नवीन भारत को गढ़ने का संकल्प लेते हैं।

सखियो, सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म राजी के इस सुंदर से गीत के साथ और इस कार्यक्रम के प्रेरणादायी विचारों के साथ आज के महिला सभा कार्यक्रम को देते हैं यहीं विराम। आप सभी स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, मुस्कुराते रहें। दीजिए अनुमति अपनी सखी शालिनी श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया

0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

0: थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हुए हैं और यह समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। आज का लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।
3: गजनन स्वामी मनाऊं तुम्हें कैसे।
2: कलाकार हैं राम किशोर सूर्यवंशी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है और कलाकार हैं सुनीति महेश्वरी। हम इनसे सुनते हैं इनके गाए भजन और गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को हैं।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गाना जिसको लिया है हमने फिल्म कन्यादान से, और हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है। शंकर जयकिशन का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म पेंटर बाबू से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इस गाने को लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत है।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और हमारी घड़ी में बज रहे हैं 2:10। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। ये बयान जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे पेपर लीक मामलों में सुनवाई तेज होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्री शाह ने कहा कि युवाओं का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इसे पेपर लीक के खिलाफ मील का पत्थर बताया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और

इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अमर शहीद आजाद कुटिया पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वे प्रगतिशील किसानों और मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 287 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 53 करोड़ रुपये के पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे जिले के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी संवाद करेंगे। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक बर्णवाल अब प्रदेश के अस्थायी मुख्य सचिव होंगे। वे अनुराग जैन का स्थान लेंगे। श्री अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कल देर शाम इसका आदेश जारी किया था। झारखंड से आने वाले श्री बर्णवाल ने बीटेक के साथ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। बर्णवाल को स्वास्थ्य, प्रशासन और नीति निर्माण से जुड़े विभिन्न विभागों में काम करने का लंबा अनुभव है। प्रदेश के राज्य कृषि उपज मंडी बोर्ड ने 1400 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। ये पदोन्नति 30 से अधिक संवर्गों में दी गई है। मंडी निरीक्षक के पद पर सबसे ज्यादा 774 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। ये पदोन्नति के आदेश कल जारी किए गए। आज देश राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया था। आकाशवाणी आज 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। यह देश के करीब 92% क्षेत्र और 99% आबादी तक पहुंचता है। आकाशवाणी का बाह्य सेवा प्रभाग 100 से ज्यादा देशों में भी प्रसारण करता है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ सप्ताह मनाया जा रहा है। ये 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगा। कल विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के करीब 138 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं आज कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बाघ रेस्क्यू कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का चयन भारतीय हॉकी टीम में किया गया है। यह टीम बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक आयोजित होने वाले हॉकी विश्व कप में खेलेगी। भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह करेंगे। भारत को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स से अपना पहला मुकाबला खेलेगी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में पिछले 60 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 40 से ज्यादा जिले बारिश से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत कल आगरमालवा जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं और आमजनों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया गया। झाबुआ शहर में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। रक्षाबंधन और पवित्र सावन माह के अवसर पर कटनी प्रधान डाकघर जबलपुर संभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष सेवाएं शुरू की। और शिवपुरी जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा डायरिया रोको अभियान के तहत कल विकासखंड खनियाधाना के सभी गांवों के पेयजल स्रोतों में जर्मेक्स डालकर क्लोरीनेशन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्टैग अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
2: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे, ये ठीक नहीं है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
3: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
4: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख

0: बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
3: Our position on the Indus Water Treaty remains clear.
4: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो आपसी विश्वास और सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
3: Is regularly deployed as an instrument of state policy.
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया

0: ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्डचवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मंजिल फिल्म का एक गाना। आवाज लता मंगेशकर की है, योगेश का लिखा हुआ यह गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है वह है हायर सेकेंडरी स्कूल भोरी आस्टा जिले सीहोर से लिखने वाले हैं रामबाबू परमार, महेश परमार, विक्रम मालवीय, लोकेंद्र ठाकुर, अर्जुन धनगर, अके सिंह बकोरिया, जितेंद्र पंडोले, यासीन खान, किरण परमार, रखिता मेवाड़ा, शीतल मेवाड़ा, राम सिंह दादा, संतोष दादा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है, लिखने वाले हैं योगेश कुमार चौरसिया, श्रीमती संगीता चौरसिया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम मंजिल।

अगला गाना लिया है फिल्म आशा का, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सपना संगीता रोड इंदौर से, लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है अम्बेडकर चौक खुरई से, लिखने वाले हैं राम सखी, परमानंद, सौरव, गौरव, किशोरी बोस, एल पी पुरोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित, छोटू और उनके समस्त परिवार के साथियों ने सुनना चाहा है ये गाना। सुनिए

अगला गाना लिया है हमने लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गाने को हमने लिया है फिल्म अनपढ़ से, और राजा मेहदी अली खान ने इस गाने को लिखा है और मदन मोहन का संगीत है। अनपढ़ फिल्म के इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है ग्राम भौरा आस्टा सीहोर से लिखने वाले हैं महेश परमार, लोकेंद्र, विक्रम, राम बाबू परमार, अर्जुन, अके सिंह और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है, लिखने वाले हैं राम सिंह ठाकुर, संतोष हराया, विजन मेवाड़ा और सज्जन सिटोली। इन्होंने इस गाने को पसंद किया है। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से, लिखने वाले हैं गन्नू लाल रजक, आर के साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है, रवि का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में एक फरमाइश आई है, गौरी नगर इंदौर से लिखने वाले हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है सिंहपुर बड़ा से, लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। और राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित और समस्त राजावत परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए फरमाइश है हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।

0: यहाँ बस में अजब दुनिया।
1: अगला गाना हमने लिया है फिल्म अनपढ़ से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है शिवलोक ग्रीन से। लिखने वाले हैं तुलसीराम घनश्याम, त्रिवेणी प्रसाद, राहुल सागर, राजेश पंडित, खालिद, राम स्वरूप, मिलन, निखिल और उनके बहुत सारे दोस्त। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार। इसी गाने को पसंद किया है सिरोंज से। लिखने वाले हैं आमिर खान, फायजा खान, मायशा, मरियम और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनिए ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 हुए हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे पेपर लीक मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्री शाह ने कहा कि युवाओं का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आजाद कुटिया पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिला है। 1991 बैच के IAS अधिकारी अशोक पर्णवाल अस्थायी मुख्य सचिव होंगे। वे अनुराग जैन की जगह लेंगे। अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है। प्रदेश के राज्य कृषि उपज मंडी बोर्ड ने 1400 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। ये पदोन्नति 30 से अधिक संवर्गों में दी गई है। मंडी निरीक्षक के पद पर सबसे ज्यादा 774 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली है। और आज देश राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आइए शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगी। 5:33 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00। छह बजकर 30 मिनट पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी 7:21 पर होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। रात 8:00 हम आपको सुनवाएंगे संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं 8:15 पर। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे विधानसभा समीक्षा। 8:35 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 9:30 पर भी हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। और 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल काल के दौरान हुई रिकॉर्डिंग, कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। कृपया इसको पुनः सुन लीजिए। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाएंगे 10:00 से। आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम, जो आकाशवाणी मध्य प्रदेश आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होना है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

आकाशवाणी TTH के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी से प्रसारण अभी जारी है। इस बीच मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव के साथ DTH के ऑडियो चैनल और वेव से OTT पर आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। इस बीच DTH पर प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद खान।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:02 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।
1: गजानन स्वामी
0: पहले कलाकार हैं लोक संगीत में, राम किशोर सूर्यवंशी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण डीटीएच ऑडियो चैनल पर। लिखित प्रस्तुत है चित्रपट संगीत, और चित्रपट संगीत में सबसे पहले ये गाना।

काली घटा, इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म सुहाग से, आवाज़ें हैं आशा भोसले और शशि कपूर की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

ये गीत था फिल्म परवरिश का, आवाज़ें थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र सिंह और साथियों की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म आत्माराम से। दूसरी आवाज़ है इसमें लता मंगेशकर की और रामेश्वर शर्मा का लिखा हुआ गाना है, शंकर जयकिशन का संगीत। सुनिए ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने छात्रों के भविष्य की रक्षा को लेकर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। आज देश राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया था। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत 22 से 28 जुलाई तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कल विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के करीब 138 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का चयन भारतीय हॉकी टीम में किया गया है। यह टीम हॉकी विश्व कप जो बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित होगा खेलेगी। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है नाटक जेब कतरा। लेखक हैं सादत हसन मंटो और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
2: प्रस्तुत है नाटक जेब कतरा। लेखक सादत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: अरे भाई ऊपर क्यों चढ़े आते हो, सुझाई नहीं देता क्या?
1: अमा कुछ होश की दवा करो, मैं कहाँ ऊपर आ रहा हूँ?
2: क्यों धक्के देते हो? अरे कुछ इस औरत का तो लिहाज करो। अरे अरे देखो बेचारी पिस गई है।
3: अरे हाँ यार भैया थोड़ी सी जगह बना दो ना।
4: अरे तो तुम ही हट जाओ ना, थोड़ी जगह बना दो, बेचारी का बटुआ गिर गया है।
5: ठहरिए मैं उठा देता हूँ, ये लीजिए।
6: शुक्रिया।
0: अरे अब ये क्या हो रहा है, रास्ता साफ क्यों नहीं होता?
1: पता नहीं, कहते हैं आगे छकड़ा उलट गया है।
2: समझ में नहीं आता इतने छोटे बाजारों में छकड़े आखिर ये चलने क्यों देते हैं?
3: अरे भाई साहब या तो बाजार बढ़े और चौड़े किए जाए, या फिर इन छकड़ों का साइज है ना जो, इसको छोटा किया जाए।
7: संदेश टू सोल्जर्स।

हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन, नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य, नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की, उन अफसरों की, जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम पर, महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने ला खड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया। हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जाबाज पायलट इसका हिस्सा है।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का, इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। माँ भी एक अकम्प्लिश्ड एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी रहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोल वेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। ये एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के 3 अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशंस दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट

एंड गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था। पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध, 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ, जानेंगे।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना। 1957 और 1958 के बीच उन्होंने जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने युवा कैडेट्स को हार्वर्ड एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग दी और अपनी सिखाने की कला और तकनीकी दक्षता को और बेहतर बनाया। 1958 में आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट यानी JBCU में खास ट्रेनिंग लेने के बाद वो कैनबरा जेट बॉम्बर पर चले गए। यहीं से बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में उनकी विशेषज्ञता की शुरुआत हुई। उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने MiG-15 और MiG-17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान

कि जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए, ट्रेनिंग फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रेनक मिशन्स में जाने

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के, उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे। तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में एक ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसी उड़ानें भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी, लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसा मिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। मिशन्स तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर जेट सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटन टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम रही। इंडियन एयरफोर्स के नैट फाइटर्स सुपरसोनिक साबर को चुनौती देने के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड में रात के अंधेरे में घूमते रहते थे, और जब भी सेबर जेट सरहद पार करके हमारे देश की तरफ आते थे तो उस हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे उतरते हुए एक एक्स्ट्रा स्पीड गेन करते हुए वो फायर करते थे। और वैसे ही कैनबरा और मिंग्स इस सुपरसोनिक जहाज का सामना करके उसे नष्ट कर रहे थे। ग्राउंड पर वॉर चल रही थी जहां इंडियन आर्मी एक बहुत घातक युद्ध लड़ रही थी। असल उत्तर का वो बैटलफील्ड जहां की रिकॉनोसेंस मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी पोजीशंस का सही ब्यौरा दिया। एक ऐसा बैटल जहां खून की होली खेली गई। ये खून की होली जमीन पर खेली गई थी जहां हमारे बहुत सारे जाबाज सिपाही डटे रहे। गोलियां चलती रहीं और वो गोलियों को सीने पर लेते रहे, लेकिन मजाल है कि एक इंच भी उनका पैर पीछे पड़ा हो। वो दौर भीषण युद्ध का दौर था। भारत ने उस चुनौती को सामना किया और इंडियन एयरफोर्स ने जहां जहां हो सका वहां मदद पहुंचाई।

संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 की लड़ाई के इंडियन एयरफोर्स के हीरो, साथ ही साथ 1965 में शहीद हुए उन सैनिकों को भी याद करते हैं आज यहीं पर। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की जन्मतिथि है, इसलिए विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में उनको समर्पित है।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान पुठी जो कहर की नजर उस नजर

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर। लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1900

71 की, भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाडन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाडन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाडन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाडन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल 2 अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद 1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में फ्लेम आउट हुआ, यानी उड़ान के दौरान इंजन का फेल होना, जिससे उनके पास इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करने के अलावा और कोई चारा न बचा। विमान और खुद को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और कुछ ही देर बाद वो शहीद हो गए।

कमांडर पद्मनाभ गौतम भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनका करियर असाधारण साहस, अटूट समर्पण और देश सेवा के प्रति पक्के संकल्प से भरा रहा। 1965 और 1971 दोनों युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी के अहम मिशनों को नेतृत्व किया, जिन्होंने दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनके निडर कारनामे, खासकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर किए गए ऑपरेशन, आज भी हमारे जांबाज पायलट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो लड़ाई हो 1965 की, 71 की, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स खड़ी है डटकर उस तिरंगे के लिए, आपके लिए, हमारे लिए।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमने आप सबको रूबरू कराया विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज पायलट से। 16 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की, और आज उनकी जन्मतिथि है, इसीलिए आज का संदेश टू सोल्जर्स समर्पित किया हमने विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को। आशा करते हैं आकाशवाणी की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि याद है ना वो अल्फाज, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी।

नमस्कार, समय आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिंदी में मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक स्थगित। सरकार ने उन सोशल मीडिया पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान 21 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री मनोहर लाल ने बताया कि जून 2026 तक देश की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट से अधिक हो गई है। भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया। कहा, सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि रुकी रहेगी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के हिंदी में मुख्य समाचार।

0: नमस्कार साथियों, नई उम्मीदों, नए जोश और नई सोच के साथ आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज के सुनहरे सफर में हम हैं आपके रेडियो दोस्त अमीषा पटेल
1: और डिम्पी रावते।
0: तो चलिए दोस्तों, ज्ञान और मनोरंजन से भरे इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के दो प्रश्नों के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली यात्री ट्रेन कब और कहाँ चली थी।
1: दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है।
0: साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आज की चर्चाओं में और सुनिए आज के कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म डंकी से, जिसमें आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, यदि एक सुबह ऐसी हो जब ना कोई समाचार हो, ना कोई रेडियो की आवाज, ना कोई टीवी प्रसारण, ना देश दुनिया की कोई जानकारी, तो सोचिए यह संसार कितना मौन, कितना दिशाहीन और कितना निर्जीव प्रतीत होगा।
1: दोस्तों, जिस आवाज ने सीमाओं को मिटाकर करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में बांधा, जिसने हर घर तक ज्ञान, संस्कृति, चेतना और विश्वास पहुंचाया, आज उसी गौरवशाली विरासत का उत्सव है।
0: अमीषा, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 23 जुलाई 1927 को हुआ। आगे चलकर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, जिसे आज हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं।
1: हाँ डिम्पी, आकाशवाणी ने देश के दूरदराज क्षेत्रों तक समाचार, शिक्षा, संगीत और संस्कृति पहुंचाकर करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है।
0: बिल्कुल, जब ना इंटरनेट था और ना मोबाइल, तब रेडियो ही लोगों की आवाज और दुनिया से जुड़ने का सबसे भरोसेमंद माध्यम था। किसानों को मौसम, खेती की नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली। सीमाओं पर डटे सैनिकों का मनोबल देशभक्ति गीतों और राष्ट्र के संदेशों से मजबूत हुआ।
1: डिम्पी, सन 1959 में दूरदर्शन का जन्म हुआ और पहली बार भारत ने चित्र और ध्वनि को साथ साथ देखा। ब्लैक एंड व्हाइट प्रसारण से लेकर रंगीन टेलीविजन, एफएम रेडियो, डीटीएच और आज के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक भारतीय प्रसारण निरंतर विकसित होता रहा है।
0: दोस्तों, जब देश कठिन परिस्थितियों से गुजरा, तब भी प्रसारण ने अपनी अहम भूमिका निभाई। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन का दौर हो, युद्ध का समय हो, या बाढ़, भूकंप, चक्रवात या महामारी, भारतीय प्रसारण ने लोगों तक समय पर सही सूचना पहुंचाई, अफवाहों को रोका और देश के हर नागरिक को संयम, सतर्कता और एकजुटता का संदेश देकर संकट की घड़ी में पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया।
1: डिम्पी, भारतीय प्रसारण ने केवल समाचार नहीं दिए, बल्कि भारत की संस्कृति को भी जीवित रखा। लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कवि सम्मेलन, साहित्यिक चर्चाएं, विविध भारती जैसे कार्यक्रम ने संगीत और सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया। दूरदर्शन ने रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिक के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना को नई ऊंचाइयां दी।
0: हाँ मीशा, आज तो हर हाथ में मोबाइल है, आज माध्यम बदल गए हैं, उद्देश्य नहीं। आकाशवाणी या मोबाइल ऐप पर भी सुनी जाती है, दूरदर्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देखा जाता है।
1: दोस्तों, भारतीय प्रसारण केवल तकनीक का इतिहास नहीं, बल्कि भारत के विकास, विश्वास और बदलाव की कहानी है।
0: दोस्तों, आइए भारतीय प्रसारण दिवस पर हम उन सभी उद्घोषकों, पत्रकारों, तकनीशियनों, निर्माताओं और अनगिनत कर्मयोगियों, प्रसारण कर्मियों को नमन करें, जिनकी आवाज और परिश्रम ने करोड़ों लोगों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश पहुंचाया है।
1: और दोस्तों, इसी के साथ अब सुनिए आज के कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लाल से चड्डा से, जिसमें आवाज दी है मोहन कनन ने।

0: दोस्तों, जब भी भारत के महान क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है, एक ऐसा नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। आज प्रेरक व्यक्तित्व में हम बात कर रहे हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की।
1: दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ था। जब वे केवल 15 वर्ष के थे, असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। तब अदालत में उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेलखाना बताया।
0: डिम्पी, कितना अद्भुत आत्मविश्वास था। लगता है जैसे उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि उनका जीवन केवल भारत माता की सेवा के लिए है।
1: बिल्कुल अमीषा, उन्होंने क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को मजबूत किया। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता भीख मांगने से नहीं मिलती, साहस, त्याग और संघर्ष से प्राप्त होती है।
0: दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड के बाद जब अंग्रेजों ने अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर दिया, तब ऐसा लगा कि क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु जैसे युवाओं का मार्गदर्शन किया।
1: दोस्तों, वे अनुशासन, निर्भीकता और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। उनका संकल्प था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया।
0: दोस्तों, 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने जब उन्हें चारों ओर से घेर लिया, तब उन्होंने स्वयं को अंग्रेजों के हाथों जीवित पकड़ने के बजाय मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया।

0: डिम्पी, जीवन में हर किसी के सामने अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो लोग हर हाल में सकारात्मक रहते हैं वे मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं।
1: बिल्कुल अमीषा, जीवन में कई बार लोगों को मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तब वे निराश और हताश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने का मौका देती है।
0: साथियों, अगर हम हर छोटी बात पर हार मान लें तो अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए जरूरी है कि हम खुद पर भरोसा रखें और लगातार कोशिश करते रहें।
1: हाँ अमीषा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। जो लोग कोशिश करना नहीं छोड़ते वे एक ना एक दिन जरूर सफल होते हैं।
0: दोस्तों, सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब ये होता है कि परेशानी आने पर भी आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे और उसका सामना डटकर करेंगे।
1: अमीषा, जब हम अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ती जाती है।
0: हाँ डिम्पी, और यही सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आज के युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो दोस्तों, याद रखें, हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें,
1: क्योंकि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बीती हुई गलतियों से सीखिए, लेकिन उन्हें लेकर दुखी मत रहिए। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए।
0: और दोस्तों,

इसी सकारात्मक सोच के साथ अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म ये जवानी है दीवानी से, जिसमें आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।